नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वागर रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रोता साथियों, आप सुनेंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम बात करेंगे उन सपनों की जो आंखों में बसते हैं, दिल में धड़कते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। अगली कड़ी में कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, जहां होगा बॉलीवुड के बेहतरीन गानों का तड़का और मस्ती का धमाका। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिए आलड़ी, कोरा ने वालोर, रोपो खाओ सब्जिए, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांसे महीने बाल ले आ खवानो आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
2: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए?
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
2: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
4: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहेगी सद्भावनाओं के विचारों से हमारी ही चेतना शुद्ध होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कशिश, मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं चलता बल्कि उसके विचारों, भावनाओं और संस्कारों से संचालित होता है।
0: जी,
1: जिस प्रकार स्वच्छ जल शरीर को स्वस्थ रखता है उसी प्रकार अच्छे और सकारात्मक विचार मन को निर्मल बनाते हैं। आज के समय में जब समाज में तनाव, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है तब सद्भावना का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सद्भावना केवल दूसरों के प्रति अच्छा सोचने का नाम नहीं है बल्कि अपने भीतर प्रेम, करुणा, दया और सहनशीलता को विकसित करने की प्रक्रिया भी है।
0: जी जी,
1: जब मनुष्य के मन में सद्भावना के विचार आते हैं तब उसकी चेतना शुद्ध होने लगती है और उसका व्यक्तित्व उज्ज्वल बन जाता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा जागृति जी। तो आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी इस विषय को लेकर ढेर सारी चर्चा रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि हम दोस्तों को पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले गीत के साथ कर ले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल समाज को ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के संसार को भी बदलने की शक्ति रखता है। विषय है सद्भावना के विचारों से हमारी चेतना शुद्ध होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी कि आज का समय तेज गति, तनाव और डिजिटल शोर का समय है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है, लेकिन साथियों इस दौड़ में कहीं न कहीं मनुष्य को अपने भीतर की शांति, अपने भीतर का अपनापन और संवेदनशीलता खोनी पड़ रही है। लोग बाहरी चमक में उलझते जा रहे हैं लेकिन भीतर का मन अशांत हो रहा है ये कोई नहीं देख रहा। ऐसे समय में जागृति जी सद्भावना केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का आधार भी है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि सद्भावना का मतलब होता है दूसरों के प्रति शुभ भावना रखना, किसी के लिए बुरा न सोचना, न किसी का बुरा करना, साथ ही सहायता और प्रेम का भाव रखना। हम कह सकते हैं कि जब हमारे विचार सकारात्मक और शुभ होते हैं साथियों, तब वे केवल सामने वाले को ही नहीं प्रभावित करते बल्कि हमारी अंदर की चेतना को भी निर्मल और शांत बनाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि सबके प्रति शुभ भावना रखना, किसी के प्रति द्वेष, घृणा या बुराई न सोचकर प्रेम और सम्मान का भाव रखना ही सद्भावना कहलाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जिस व्यक्ति के विचार सकारात्मक होते हैं श्रोताओं, उसका व्यवहार भी मधुर होता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान पाते हैं और हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए गलत सोचता है उसके मन में अशांति बनी रहती है, उसका चेहरा भी चिंता और क्रोध से भरा दिखाई देता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि जैसे विचार होंगे वैसे हमारे संस्कार भी बनते जाते हैं। मनुष्य की चेतना उसके विचारों से निर्मित होती है श्रोताओं। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और नफरत हो तो चेतना दूषित हो जाती है
0: जी।
1: ऐसे व्यक्ति को हर जगह बुराई दिखाई देती है, लेकिन जब मन में प्रेम, सहयोग और सद्भावना का भाव होता है तब चेतना शुद्ध और शांत रहती है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक शांति देती है और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखती है, साथ ही दूसरों की सहायता करने के लिए भी तत्पर रहती है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा जागृति जी। इसी के साथ एक कहावत हम सभी ने सुनी है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि दोस्तों हमारे मन में ईर्ष्या, क्रोध, नफरत और स्वार्थ भरे हैं तो जीवन में तनाव और अशांति बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वही यदि मन में दया, प्रेम, करुणा और सद्भावना है तो जीवन में संतुलन, संतोष और मानसिक शांति अपने आप ही आएगी। ऐसे में हमारे युवाओं के लिए यह विषय काफी महत्वपूर्ण है जागृति जी, क्योंकि आज की पीढ़ी समाज का भविष्य है। यदि युवा अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लेकर जाएंगे तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों का भविष्य उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि इसमें चेतना की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि चेतना मनुष्य की आंतरिक जागरूकता है। साथियों, यह वह शक्ति है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और साथ ही हमारे व्यवहार, ये सभी हमारी चेतना से ही प्रभावित होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि मनुष्य की चेतना उसके विचारों से निर्मित होती है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। आज हम देखते हैं कि आज का युग प्रतियोगिता का युग है, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बताते हैं हमारे युवा साथियों को कि श्रोता साथियों, आज का युग प्रतियोगिता का युग है। लोग आगे बढ़ने की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे दूसरों की भावनाओं को समझना ही भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं, कटुता रखते हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण श्रोता साथियों नकारात्मक सोच होती है। यदि मनुष्य अपने भीतर सद्भावनाओं के विचार को स्थान दे तो वह दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखेगा।
0: बिल्कुल,
1: इससे समाज में प्रेम और सहयोग का वातावरण भी बनता है कशिश। कहा गया है कि द्वेष मिटेगा तो ही प्रेम बढ़ेगा और तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोताओं सद्भावना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो सबसे पहले उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे भीतर शांति आती है, संतोष आता है और आनंद का अनुभव होता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कशिश के सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अधिक स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके भीतर तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है।
0: बिल्कुल,
1: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सद्भावना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि हमारी युवा साथियों से बातचीत चल ही रही है कि सद्भावनाओं के विचार हमारी चेतना को कैसे शुद्ध करते हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातचीत का विषय था कि सद्भावनाओं के विचारों से हमारी चेतना ही शुद्ध होती है, इसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: बातें बहुत सारी हो चुकी थी, बीच में गीत संगीत होते हैं तो हमारे युवा साथियों का भी मनोरंजन हो जाता है। कशिश
1: जी, बिल्कुल।
0: तो फिर से हम रूबरू होते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं कि साथियों, जैसा कि परिवार में सद्भावना का विशेष महत्व होता है, जिस घर में प्रेम और सम्मान सहयोग का वातावरण होता है, वहां सुख और शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। इसके विपरीत जहां कठोरता होती है, स्वार्थ होता है, वहां हमेशा तनाव और अशांति बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए परिवार की खुशहाली के लिए सद्भावना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, विद्यालय और समाज में भी सद्भावना का महत्व होता है। यदि एक विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करे, जाति धर्म का भेदभाव न करे, सहयोग की भावना रखे, तो विद्यालय का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी प्रकार समाज में यदि लोग एक दूसरे का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, तो समाज मजबूत और विकसित बन सकता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं कि मनुष्य के विचार ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि साथियों विचार सकारात्मक होंगे तो जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेंगे, और यदि विचार नकारात्मक है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सुख दुख और असफलता ही देखेगा जागृति से।
0: बिल्कुल,
1: कई बार साथियों हम ये सोचते हैं कि केवल हमारे कर्म ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में कर्मों की शुरुआत विचारों से होती है। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका व्यवहार होगा, और जैसा आपका व्यवहार होगा साथियों वैसा आपका जीवन बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि किसी युवक के मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है तो वह कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वही युवक दूसरों के सफलता से प्रेरणा लेता है और उनके लिए शुभ सोचता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ेगी साथियों।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए ये कहा जाता है कि अच्छे विचार केवल दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं का भी कल्याण करते हैं।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमें समझना होगा कि संसार में हर व्यक्ति अलग है, सबकी सोच अलग है, परिस्थितियाँ अलग है और जीवन अलग अलग है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए किसी के प्रति घृणा रखने के बजाय श्रोताओं, हमें सहनशीलता और समझदारी का परिचय देना होगा। सद्भावना हमें यही सिखाती है कशिश, कि हम सबको साथ लेकर चले और मानवता को सबसे ऊपर रखे।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है साथियों कि सबको साथ लेकर चलना हमें सीखना होगा, तभी मानवता का दीप जला सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि सद्भावना केवल एक विचार नहीं है जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली शक्ति है।
1: बिल्कुल,
0: यह हमारे मन को शुद्ध करती है, चेतना को उज्जवल बनाती है और समाज में प्रेम तथा शांति का वातावरण तैयार करती है। यदि हर व्यक्ति अपने मन में सद्भावनाओं के विचार को स्थान दे कशिश, तो न केवल उसका जीवन सुखमय बनेगा बल्कि पूरा समाज भी खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: हमें हमेशा ये प्रयास करने होंगे श्रोताओं कि हमारे विचार सकारात्मक हो, हमारी वाणी मधुर हो और हमारा व्यवहार मानवता से भरा हो। यही सच्चे जीवन का मार्ग है। सद्भावना का जो दीप जलाता है वही अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सजाता है। मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी पूजा है श्रोताओं, और प्रेम से भरी चेतना ही मानवता की सच्ची पूजा है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सद्भावना रखने वाला व्यक्ति के अंदर जो है वो भीतर से मजबूत होता है। उसे किसी से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो दूसरों को गिराता नहीं है बल्कि स्वयं को बेहतर बनाकर आगे बढ़ना चाहता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ऐसे लोगों में आत्मविश्वास ज्यादा देखा जाता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सद्भावना रखने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है। उसे केवल अपने लाभ की चिंता नहीं होती, वो दूसरों के बारे में पहले सोचता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि परिवार प्रेम और विश्वास का आधार सद्भावना होती है। लेकिन यदि परिवार के सदस्यों में कटुता स्वार्थ और अहंकार बढ़ जाए तो घर का वातावरण अशांत इससे हो जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि सद्भावना परिवार को जोड़कर रखती है। माता पिता और बच्चों के प्रति स्नेह रहता है, बच्चों का बड़ों के प्रति सम्मान रहता है, भाई बहनों का सहयोग रहता है, और कठिन समय में एक दूसरे का साथ भी हमें मिलता है साथियों।
0: बिल्कुल,
1: कहा जाता है कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ परिवार केवल एक घर नहीं बल्कि भावनाओं का सुरक्षित स्थान बन जाता है।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, और अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन

0: साथ ही उस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत में राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आराज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघर रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हां साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता,

0: बिल्कुल।
1: कशिश, हम देखते हैं कि बचपन जीवन का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण दौर होता है। इसी समय बच्चे सीखते हैं कैसे रहना है, क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, अगर इस उम्र में स्वच्छता की आदत डाल दी जाए तो यह जीवन भर साथ रहती है। हम देखते हैं कशिश के बचपन को कच्ची मिट्टी की तरह कहा जाता है।
0: जी जी।
1: जैसा ढालेंगे वैसा बन जाएगा। स्वच्छता केवल श्रोता साथियों सफाई नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। साफ हाथ, कम बीमारियां, साफ घर, स्वस्थ परिवार, साफ वातावरण, खुशहाल बचपन। अगर बच्चा शुरू से ही साफ सफाई की आदत सीखता है तो वह न केवल खुद स्वस्थ रहता है बल्कि समाज को भी स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना

0: के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि साथियों गीत से पहले विषय बता ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छता और बचपन पर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम कह सकते हैं कि स्वच्छता का अर्थ होता है साफ सफाई रखना। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों, खासकर बचपन में स्वच्छता की आदत डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बचपन वह समय होता है कशिश जब बच्चे सीखते हैं, वही आदत उनके पूरे जीवन में बनी रहती है। अगर बच्चों को शुरुआत

0: सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने बताया कि इसी समय बच्चों में अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें विकसित की जाती है।
1: जी
0: अंजलि जी, स्वच्छता जो है जिसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं, वो केवल शरीर या कपड़ों की सफाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यह हमारे घर, विद्यालय, आसपास की वातावरण, विचारों और व्यवहार की भी सफाई है साथियों। क्योंकि स्वच्छता एक आदत होती है, एक संस्कार होते हैं, जो बचपन से ही बच्चों को भी सिखाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज के समय में जब बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, तब पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: और बच्चे मोबाइल और डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि स्वच्छता हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीमारियों से बचाव अगर हम बच्चों का नहीं करेंगे तो बच्चों

0: वातावरण बच्चों के दिमाग को शांत और एकाग्र बनाता है।
1: जी
0: श्रोता साथियों, जो बच्चा साफ सुथरा रहता है वह दूसरों के बीच आत्मविश्वास से भरा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों को स्वच्छता की आदत सिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे वही सीखते हैं जो वह घर में देखते हैं। अगर कशिश और रीना माता पिता खुद साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। और बच्चों को छोटे छोटे काम अगर हम देते हैं कि जैसे कि खिलौने समटना, हाथ धोना और डांट की बजाय अगर हम उन्हें प्यार से इन सारी चीजों को समझाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है यह बात हम उन्हें कहानी और खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, ताकि ये जो महत्वपूर्ण स्वच्छता का गुण है वो हमारे बच्चों के अंदर आ सके।
2: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अगर ये हम बात करें कि बचपन में स्वच्छता के महत्व पर, तो हम कह सकते हैं कि बचपन जीवन की नींव होता है। इस समय बच्चों का शरीर और मन तेजी से विकसित होता है। कशिश, यदि बच्चे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं साथियों, तो वे कम बीमार पड़ते हैं। गंदगी से कई तरह की बीमारियां फैलती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, पेट दर्द, बुखार। इसलिए बच्चों को रोज नहाना, हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और अपने आसपास साफ सफाई रखना जरूर सिखाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: स्वच्छता केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और विचार की भी होनी चाहिए। बच्चों को अच्छे विचार अपनाने और बुरी आदतों से दूर रहने की भी हमें शिक्षा देनी चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ कशिश कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बताना चाहेंगे कि स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है बल्कि संस्कारों का केंद्र भी है। स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाना, बच्चों को डस्टबिन का उपयोग सिखाना, स्वच्छता दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित करना समाज में मिलकर बच्चों के लिए साफ वातावरण बना सकता है। सड़क, पार्क, पानी जैसे स्रोत को हमें साफ रखने की जरूरत होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, और स्वच्छता और

0: कि स्वच्छता और बचपन का रिश्ता केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ, सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य की नींव है। जिस बच्चे का बचपन स्वच्छ वातावरण में बीतता है, उसका शरीर ही नहीं बल्कि सोच, आदतें और व्यवहार भी सकारात्मक बनते हैं।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि गंदगी केवल बीमारियां नहीं फैलाती, बल्कि धीरे धीरे बच्चों की ऊर्जा, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। इसलिए स्वच्छता को केवल नियम या मजबूरी मानकर नहीं, बल्कि जीवन का जरूरी हिस्सा मानकर

0: वो भी दिना श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्कूल में बच्चों को बताया जाता है
1: बिल्कुल,
0: और पर्यावरण दिवस भी मनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयास होते हैं साथियों, जिससे बच्चों को स्वच्छता के प्रति अवगत करवाया जाता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि यह भी समझना जरूरी है कि स्वच्छता केवल घर के अंदर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
0: जी,
1: अगर घर साफ हो लेकिन बाहर की गली, स्कूल, मैदान और पानी के स्रोत गंदे हो तो बच्चों का स्वास्थ्य फिर भी खतरे में रहेगा। इसलिए पूरे समाज को मिलकर बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना होगा। गांव हो या शहर, हर जगह बच्चों को साफ पानी, साफ शौचालय और स्वच्छ वातावरण मिलना उनका अधिकार है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कशिश और रीना कि माता पिता, शिक्षक और समाज तीनों की जिम्मेदारी बराबर है। यदि घर में बड़े लोग खुद सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों से उम्मीद करना मुश्किल है। बच्चे सुनने से ज्यादा देख कर सीखते हैं, इसलिए जरूरी है श्रोता साथियों के बड़े लोग खुद उदाहरण बने। जब परिवार मिलकर सफाई करते हैं, जब बच्चों के मन में भी यह भावना आती है कि स्वच्छता कोई बोझ नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी की पहचान है, तो बच्चे इन कार्यों में लग जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को केवल बड़ा नहीं करेंगे बल्कि उन्हें

हमारे स्वास्थ्य से होता है। अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। साथियों, साफ वातावरण में रहने से कशिश शरीर मजबूत रहता है और मन में खुशी रहती है। वही गंदगी से की

0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी और एक संस्कार भी है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बचपन स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित बने तो हमें आज से ही उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाना होगा।
1: बिल्कुल
0: साथियों, याद रखिए कि एक स्वच्छ बच्चा ही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। घर की छोटी छोटी आदतें जैसे कि हाथ धोना, कूड़ा डस्टबिन में डालना, साफ वातावरण रखना, ये सभी चीजें बच्चों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए दोस्तों, हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को भी स्वच्छ रखेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छता का सही महत्व सिखाएंगे, क्योंकि स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ और सुंदर भारत का सपना साकार कर सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता।

0: सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है साथियों 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल को
1: और आपकी अपनी दोस्त कश

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपने साथ ही जागृति भट्ट,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: श्रोताओ, हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, छोटी बेईमानी बड़े नुकसान कैसे करती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम देखते हैं अंजलि की बेईमानी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। मनुष्य का जीवन विश्वास, ईमानदारी और सच्चाई पर टिका होता है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बेईमानी करना शुरू करता है तो वही आदत धीरे धीरे उसके चरित्र का

0: शुरुआत में श्रद्धा साथी मामूली गलती लगती है, लेकिन समय के साथ ये बड़े नुकसान का कारण बनती है।
1: जी हाँ,
0: समाज में कई समस्याएं केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग छोटी बेईमानियों को सामान्य समझने लगे हैं। कोई दुकानदार थोड़ा कम तोल देता है, कोई विद्यार्थी नकल कर लेता है, कोई कर्मचारी समय की चोरी करता है, तो कोई झूठ बोलकर अपना फायदा उठा लेता है। अंजलि, छोटी छोटी बातें देखने में बहुत मामूली लगती है हमको, परंतु इसके जो परिणाम होते हैं बहुत गंभीर होते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें होने वाली हैं कि किस तरीके से कभी कभी हम जानकर और अनजाने में छोटी छोटी बेईमानियां कर देते हैं, वो किस तरीके से नुकसानदेह हमारे लिए हो सकती है। बातें ढेर सारी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, तो आइए साथी सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारस।

0: इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि आज हमारा बातचीत करने का विषय है छोटी बेईमानी बड़े नुकसान कैसे करती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि कहा गया है कि छोटी बेईमानी की आदत जीवन में हमारी बहुत बड़ी आफत बन जाती है। छोटी बेईमानी वो होती है जिसमें व्यक्ति ये सोचकर गलत काम करता है कि इससे किसी को अधिक नुकसान नहीं होगा, जैसे बस का टिकट न लेना, स्कूल में होमवर्क के बारे में झूठ बोलना, दुकान में गलत पैसे वापस मिलने पर चुप रह जाना या किसी का सामान बिना पूछे इस्तेमाल करना। लोग अक्सर इन बातों को मजाक या चतुराई समझ लेते हैं, लेकिन श्रोताओं यही छोटी आदतें धीरे धीरे मनुष्य के संस्कारों को कमजोर करती है।
1: बिल्कुल,
0: जब व्यक्ति बार बार छोटे झूठ और छोटी धोखाधड़ी करता है तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है, फिर वो बड़े गलत काम करने में भी संकोच नहीं करता।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि छोटी सी दरार अगर समय पर न भरी जाए तो पूरी दीवार गिरा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: उसी तरह श्रोता साथियों छोटी बेईमानी भी धीरे धीरे परिवार, समाज और देश की नींव को कमजोर कर देती है। ईमानदारी सिर्फ पैसों से जुड़ी नहीं होती है बल्कि ये इंसान के चरित्र, भरोसे और जिम्मेदारी से भी जुड़ी होती है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में जागृति जी लोग अक्सर कहते हैं कि सब ऐसा ही करते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। श्रोता साथियों इतने से बात से क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन यही सोच आगे चलकर बड़ी समस्याओं को जन्म देती है। सामुदायिक जीवन में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है और छोटी बेईमानी इसे विश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जैसा कि जागृति जी आपने बताया कि बेईमानी वो होती है जहां बहुत सी बार झूठ बोलने पर लोगों को फायदा हो जाता है, लोग काम चोरी करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी काम शुरुआत में हमें छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारी आदत बन जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने कहा था कि ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, छोटी बेईमानी सबसे पहले व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करती है।
1: बिल्कुल,
0: जब इंसान छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है तो उसकी सच्चाई पर लोगों का भरोसा कम होने लगता है। श्रोताओं एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना बहुत कठिन होता है, परिवार, मित्र और समाज ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं, धीरे धीरे वो अकेला पड़ जाता है। आज हम देखते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि सब करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा था।
1: बिल्कुल,
0: और यही सोच समाज में नैतिकता को खत्म कर रही है। श्रोताओं आज हम देखते हैं कि विद्यालय बच्चों के चरित्र निर्माण का स्थान होता है। यदि विद्यार्थी छोटी उम्र में ही नकल करना, झूठ बोलना या दूसरों का काम अपना बताना सीख जाए तो आगे चलकर यही आदत उसके भविष्य को भी नुकसान पहुंचाती है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर व्यापार की बात करें अंजलि, तो व्यापार विश्वास पर चलता है। यदि दुकानदार थोड़ा कम तोल दे, नकली सामान बेच दे या ग्राहक से झूठ बोले तो शुरुआत में से थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। जब ग्राहक का भरोसा टूटता है तो व्यापारी भी धीरे धीरे समाप्त तो होने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बड़े व्यापार केवल इसीलिए बंद हो जाते हैं श्रोताओं, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी बेईमानियां की है।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा व्यापार वही होता है जो ग्राहक के विश्वास को सबसे अधिक महत्व दे। ईमानदारी से कमाया गया धन हमेशा सुख और सम्मान देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि समाज भरोसे पर चलता है। जब लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि अगर मरीज डॉक्टर पर भरोसा न करे, किसान व्यापारी पर भरोसा न करे, ग्राहक दुकानदार पर भरोसा न करे और जनता सरकारी व्यवस्था पर भरोसा न करे तो समाज में हर जगह डर और संदेह फैल जाएगा। छोटी बेईमानियां लोगों के मन में यह भाव पैदा करती है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही सोच सामाजिक दूरी और तनाव बढ़ाती है। जब परिवार में छोटी बेईमानियां शुरू होती है जागृति जी, तो रिश्तों में दरार आती है, जिससे बच्चों से झूठ बोलना, पैसों की बात छिपाना, जिम्मेदारी से बचना, वादे पूरे न करना। श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर माता पिता छोटी बेईमानी को सामान्य मानते हैं तो बच्चे भी उसी राह पर चल पड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे परिवार में विश्वास खत्म होने लगता है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

सच्चा स्वराज में, जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से छोटी सी बेईमानी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। श्रोता साथ छोटी बेईमानियां देश की अर्थ

0: ये सब मिलकर देश को करोड़ों का नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हर व्यक्ति यह सोचकर छोटी चोरी करे कि मेरे अकेले से क्या होगा, तो पूरे देश की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे कि सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन जब लोग गलत दस्तावेज लगाकर फायदा उठाते हैं तो असली जरूरतमंद पीछे रह जाते हैं। श्रोता साथियों, यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता बल्कि सामाजिक अन्याय भी होता है। एक व्यक्ति की छोटी बेईमानी किसी जरूरतमंद व्यक्ति का हक छीन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह जागृति जी, हम देखते हैं कि ऑफिस, खेत, दुकान, फैक्ट्री और किसी भी कार्य स्थल पर छोटी बेईमानी का असर पूरे काम पर पड़ता है।

0: नौकरी हो या व्यापार, ईमानदारी हमेशा सबसे मजबूत आधार होती है।
1: बिल्कुल।
0: जो व्यक्ति छोटी गलतियों को भी गंभीरता से लेता है वही आगे चलकर महान इंसान बनता है। एक कहानी के माध्यम से अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि एक गांव में एक रमेश नाम का लड़का था। उसकी एक दुकान थी। शुरुआत में वो बहुत ईमानदार था।
1: बिल्कुल।
0: लोग उसकी दुकान पर भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा कम तोल देगा तो उसे अधिक फायदा होगा। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला। रमेश को लगा कि ये छोटी सी चालाकी है। धीरे धीरे उसने नकली सामान बेचना भी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ग्राहकों को उसकी सच्चाई पता चल गई।
1: बिल्कुल।
0: गांव वालों ने उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया। रमेश का व्यापार ठप हो गया। उसे समझ आया कि थोड़े लाभ के लालच में उसने अपना सम्मान और विश्वास दोनों खो दिया है। उसने गांव वालों से माफी मांगी और फिर से ईमानदारी से काम करना शुरू किया।
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौटा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी बेईमानी तुरंत फायदा दे सकती है, लेकिन अंत में बहुत बड़ा नुकसान भी करवाती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कहा गया है कि क्षणिक लाभ के लालच में हमें अपने जीवन का जो मान है उसे नहीं खोना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, शुरुआत में इंसान डरता है, लेकिन जब उसे कोई रोकता नहीं है तो वह गलती आदत बन जाती है।
0: बिल्कुल।
1: धीरे धीरे इंसान अपने गलत काम को सही ठहराने लगता है कि सब ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। श्रोता साथियों, यही सोच व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करती है। यही अब बात आती है कि ईमानदारी क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, ईमानदारी सिर्फ नैतिकता नहीं बल्कि समाज की ताकत है। ईमानदार व्यक्ति भरोसेमंद होता है, सम्मान पाता है, रिश्तों को खूबसूरत रखता है, समाज में अच्छा उदाहरण बनता है। ईमानदारी से कमाया गया छोटा सम्मान भी बेईमानी से कमाए गए बड़े लाभ से ज्यादा मूल्यवान है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बेईमानी रोकने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय अपनाने होंगे। इसके लिए हमें घर में अच्छा वातावरण पेश करना होगा। छोटी गलतियों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। मेहनत और सच्चाई से सम्मान देना है। जिम्मेदारी की भावनाओं को बढ़ा

बेईमानी करने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह शांत नहीं रह सकता, उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। यही डर मानसिक तनाव पैदा करता है। ईमानदार व्यक्ति भले ही कम धन कमाए लेकिन वो चैन की नींद सोता है, उसके मन में अपराध बोध नहीं होता। सच्चाई मन को हल्का और जीवन को सुखी बनाती है। इसी के साथ आपको कहना चाहेंगे श्रोताओं कि छोटी बेईमानी कभी छोटी नहीं होती, वो धीरे धीरे इंसान की आदत, चरित्र, समाज को नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि हम आपको कार्यक्रम के माध्यम से यही बात बता रहे हैं, शुरुआत में इसका प्रभाव कम दिखाई देता है अंजलि, लेकिन समय के साथ वो बड़े संकट

0: होगी।
1: जी जी,
0: इसलिए हमें अपने जीवन में छोटी से छोटी बात में भी ईमानदारी अपनानी होगी, चाहे कोई देखे या न देखे। सही काम करना ही सच्ची महानता है। यदि हर व्यक्ति संकल्प ले कि वो छोटी बेईमानी भी नहीं करेगा तो समाज में विश्वास, शांति और खुशहाली बढ़ेगी। यही एक अच्छे नागरिक और मजबूत राष्ट्र की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि छोटी बेईमानियां देखने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। ये धीरे धीरे विश्वास को खत्म करती हैं, रिश्तों को कमजोर करती हैं और समाज को अंदर से

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा

सर्ना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

थकी जाए हैं, बीमार पड़ी जाएगा, एक खुद टूटी जाएगा, तो बीजा ने मदद हरते करेगा। इन्हें साथे अपनी जो बुने हैं इन्हें ने भी आराम, मानसिक शांति ने सहयोग ने इतनी जरूरत रहे है जितनी बीजा मन करने रहे है। अगर आपने इन्हें नजरअंदाज करी दो तो आप देखो हाँ की पूरा परिवार ने जो नींव है ये कमजोर पड़ी सा। इनके आप देखो हाँ की अपने हित तो घर नु काम जो है ये अपनी बुने करे है, घनी जिम्मेदारी तक करे है। जे वक्त घर में कोई

0: ये मोटी बात कि खुद ने साबित करना में पूछ है। अगर घर में साफ सफाई न थी तो कोई भी आवेगा तो पूछेगा कि हित दाड़ो हूँ करती थी। सोरा कमजोर है तो इम कहेंगे माँ परवरिश असल तरीका थकी न थी करती। अगर थाकी ने ये रोई रही है तो इन्हें कोई हुनवा वारू न थी। औरत थी ने इतनी कमजोर थी जाए कि अपनी बात किने भी नत कही सकती। घनी बोने दांत काड़े अंदर तक की टूटी चुकी होगा तो भी इन्होंने पाए समय नती रे तो खुद बने। इन्होंने जे भावना है ये व्यक्त करवानी इन्होंने आजादी नती। इन्होंने जे आंसू है इन्होंने जे घर ना मनक है ये नाटक कहते हैं। इन्होंने चुप्पी ने हमसदारी मानी जा है। आ मानसिक दबाव नु असर इन्होंने स्वास्थ्य माते भी पड़े है। डिप्रेशन एंजाइटी थकान सिर दर्द नींद नहीं आपो आ सब इन्होंने जीवन नु हिस्सो बने जाए पर अक्सर अनदेखो करते हैं।
1: आपे सही कीधु तनी प्रकार तक आजे कार्यक्रम में अपनी बोनो तक की घनी असल बातें साली रही है कि अपनी बोने भी थाके हैं देखभाल करवन वारा जो मनक है इन्हें देखभाल कौन करे है। तो अना विषय माते अगाड़ी भी आमस अपने बात करता रंगा पर मारू मन थी रू है कि किम ने अपनी बोना ने अपने एक और गीत हमरा भी दो
0: हो तो हमरा कितने मोरे कर अपनी बातें।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक्काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ने आ खवानू आल। अणी वातनू ध्यान राखो, आपरो जीवन सुरक्षित राखो।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, रास्ते बंद नहीं होते, सोच बंद हो जाती है। जहां समाधान की रोशनी हो, वहीं से नई शुरुआत होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉक रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम हमेशा एक नए विषय को लेकर हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे इंसान की सोच, व्यवहार और पूरा जीवन बदल सकती है। जी हाँ, समाधान सोचने की आदत। अक्सर साथियों, जब कोई समस्या आती है तो हमारा ध्यान तुरंत समस्या पर चला जाता है। हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, इतनी परेशानी क्यों आई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है, और यही से फर्क शुरू होता है। समस्या सबके जीवन में आती है साथियों, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो समस्या में फंसता नहीं, समाधान खोजता है। तो आज बातें इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं समाधान सोचने की आदत को लेकर। जी हाँ साथियों, कई बार समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हमारी चिंता उसे बना देती है। जब हम बार बार समस्या को ही सोचते रहते हैं तो मन डर से भर जाता है, लेकिन जब हम सोचते हैं तो मन में रास्ता बनता है। यानी कि दोस्तों, समस्या दीवार दिखाती है, समाधान दरवाजा खोलता है। यानी कि बहुत सी बार हम देखते हैं कि समाधान सोचने वाले लोग अलग करते क्या हैं अपने जीवन में। तो साथियों बताना चाहूंगी, फिर समस्या से घबराते वबराते नहीं है, पहले समझते हैं कि आखिरकार समस्या क्या है। वे पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, इससे निकलने का पहला कदम क्या हो सकता है, मैं क्या बदल सकता हूँ। यही सोच धीरे धीरे आदत बनती है। साथियों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक किसान के खेत में पानी की कमी हो गई। कुछ लोगों ने उससे कहा कि अब फसल खराब हो जाएगी, लेकिन किसान बैठा नहीं। उसने खेत के पास छोटी नाली बनाई, बरसात का पानी रोकना शुरू किया और अगली फसल पहले से बेहतर हुई। फर्क क्या था साथियों? समस्या सबने देखी, लेकिन समाधान एक ने सोचा। इसलिए कहना चाहूंगी कि जहां लोग रुकावट देखते हैं, वहीं कुछ लोग रास्ता बना लेते हैं। इसलिए साथियों, समाधान सोचने की आदत ही हमारे जीवन को बदल सकती है। वो कैसे बदल सकती है? तो दोस्तों, डर को हमें कम करना होगा। जब हल पर ध्यान होता है तो घबराहट कम होती है। हर हल निकलेगा यह भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है ना कि हम किसी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, तब तक कुछ भी हो जाए किसी भी चीज का हल नहीं निकल सकता। इसी के साथ समाधान जो है वो रिश्ते सुधारते हैं। यानी ये झगड़ों में दोष ढूंढने के बजाय हल अगर हम सोचेंगे तो आधी लड़ाई हमारे जीवन की यूं ही खत्म हो जाती है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि जो हर मुश्किल में रास्ता खोजता है वो कभी भी जीवन में रुकता नहीं है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में हमें शिकायत कम, सवाल ज्यादा करने हैं। क्यों हुआ से आगे अब क्या करें हमें ये सोचना है। छोटी समस्याओं के छोटे हल खुद निकालने चाहिए दोस्तों। दूसरों की मदद से हमें सीख लेनी है। जल्दबाजी नहीं, समझदारी से सोचें, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाधान सोचने वाले लोग हालात के गुलाम नहीं दिशा के निर्माता बनते हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं हमारी आपसे। आगे भी कुछ बातें हैं जो यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, जब हालात खराब हो तभी समाधान वाली सोच की असली जरूरत होती है। मुश्किल समय में अगर मन सिर्फ डर देखेगा तो हमारे कदम रुक जाएंगे, लेकिन अगर मन हल्क हो जाएगा तो उम्मीद बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, असली बदलाव कहाँ आता है तो बताना चाहूंगी कि समाधान सोचने की आदत सिर्फ समस्या हल नहीं करती, इंसान को बदलती है। वह शिकायत करने वाला नहीं, रास्ता बनाने वाला बनता है। वह दूसरों का इंतजार नहीं करता, पहला कदम खुद उठाता है। इसलिए जिंदगी बदलती है जब सोच समस्या से हटकर संभावना पर जाती है। कहना चाहूंगी दोस्तों कि मान लीजिए कि घर में कोई परेशानी है, पैसे कम है, काम अटक गया। अगर पूरा ध्यान सिर्फ चिंता पर रहेगा तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर परिवार बैठकर सोचे कि अब क्या किया जा सकता है तो वहीं से रास्ता निकलना शुरू होगा। समाधान हमेशा बड़ा नहीं होता, कई बार छोटे कदम ही शुरुआत होते हैं। श्रोता साथियों, समाधान सोचने वाले जो लोग होते हैं वो शिकायत कम करते हैं। वे बार बार यह नहीं कहते कि मेरे साथ क्यों हुआ, वे पूछते हैं कि अब आगे क्या करें, और यही सवाल जीवन की दिशा बदल देता है। जो क्यों में अटकता है वह ठहर जाता है, और जो अब क्या सोचता है वह आगे बढ़ता है। श्रोता साथियों, समस्या आए और हम टूट जाए तो संघर्ष बोझ बन जाता है, लेकिन कहना चाहूंगी कि समस्या आए और हम सीख लें तो वही संघर्ष ताकत बनता है। समाधान सोचने की आदत इंसान को हालात से बड़ा बनाती है। इसलिए हमें हर परेशानी पर खुद से पूछना है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पहला कदम क्या हो सकता है और किससे सीख सकता हूँ। धीरे धीरे मन शिकायत से हटकर हल की ओर जाने लगेगा। जब यह आदत बनती है श्रोता साथियों, तो इंसान डर से कम विश्वास से ज्यादा जीतता है। वो मुश्किल देखकर पीछे नहीं हटता, वो सोचता है कि रास्ता होगा, खोजते हैं, और यही सोच उसे मजबूत बनाती है। इसलिए दोस्तों, समस्या तो जीवन में रहेंगी, लेकिन जीवन का रूप इस बात से तय होगा कि हम समस्या गिनते हैं या समाधान खोजते हैं। क्योंकि समाधान सोचने की आदत इसलिए जीवन बदलती है क्योंकि यह इंसान को परिस्थिति का शिकार नहीं, परिस्थिति का सामना करने वाला बनाती है। और जहाँ हल सोचने की आदत बनती है वहाँ उम्मीद भी बनी रहती है। इसलिए साथियों, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, उन्हें पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका सामना कैसे करना है यह हमारी सोच तय करती है। अगर हम बार बार समस्या को ही बड़ा बनाते रहेंगे तो जीवन भारी लगेगा, लेकिन अगर हम समाधान सोचने की आदत बना लें तो वही जीवन अवसरों से भरा लगेगा। समाधान सोचने की आदत जीवन बदलती है क्योंकि यह हालात नहीं, नजरिया बदलती है। तो साथियों, यह थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे भी मैं आपसे कुछ छोटी मोटी बातें अवश्य करूंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आपके अपने दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर।
0: जी हाँ,
1: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। मनीषा, आज हम जिस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातचीत करने वाले हैं वो विषय है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका स्वास्थ्य हम कैसे संभाल के रखें।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे मुकाबले बहुत कम होती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में उन्हें कई बीमारियां बहुत जल्दी घेर लेती है, इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: कोशिश, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। बचपन, युवा अवस्था, फिर बुजुर्ग अवस्था, हर पड़ाव अपने साथ नई जिम्मेदारी और अनुभव लेकर आते हैं।
1: जी हाँ।
0: जिस प्रकार बचपन में बच्चों को सहारा और देखभाल की आवश्यकता होती है साथियों, उसी प्रकार बुजुर्ग अवस्था में भी व्यक्ति को प्रेम, सम्मान और स्वास्थ्य संबंधित विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: घर के बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते हैं कशिश, बल्कि अनुभव, संस्कार और जीवन ज्ञान का खजाना होते हैं। उनकी उपस्थिति घर को दिशा देती है और परिवार को मजबूती प्रदान करती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा।
0: साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में बदलती जीवन शैली, भागदौड़, तनाव और अकेलेपन के कारण बुजुर्गों का स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। कई बार परिवार में लोग यह समझ नहीं पाते कि बुजुर्गों की सही देखभाल कैसे करें।
1: जी,
0: केवल दवाइयां देना ही स्वास्थ्य की देखभाल करना नहीं है साथियों, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए श्रोता साथियों, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य कैसे संभाले यह विषय केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना का एक विषय है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी विषय को लेकर आज हम हमारे श्रोता साथियों से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो हमारे परिवार की नींव होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने जीवन भर मेहनत करके परिवार को संभाला होता है साथियों, और साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शरीर जो है वो कमजोर होने लगता है।
0: जी हाँ,
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और कई बीमारियां शरीर को घेरने लगती है साथियों। ऐसे समय में मनुष्य यदि परिवार उनका साथ दे तो वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, किसी भी घर की वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उस घर में बुजुर्ग कितने सम्मान और सुख से रह रहे हैं।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ अगर बात करें कि बुजुर्ग में होने वाली सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं, तो श्रोता साथियों, बुजुर्ग अवस्था में शरीर में कई प्राकृतिक परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों के कारण कुछ सामान्य बीमारियां भी श्रोता साथियों देखने को मिलती है, जैसे कि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। श्रोता साथियों, उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। साथ ही श्रोता साथियों, गलत खान पान और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण बुजुर्गों को शुगर जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं कशिश। साथ ही हम देखते हैं कि घुटनों का दर्द, गठिया, कमर दर्द और भी कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। श्रोता साथियों, कम दिखाई देने वाला मोतियाबिंब सुनने में परेशानी कारण बन सकता है, उम्र के साथ बढ़ता रहता है। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि आज कई बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं। परिवार का समय न मिलना उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। कुछ बुजुर्गों में श्रोता साथियों, याददाश्त कमजोर होने भी लगती है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने बताया कि उन्हें मधुमेह की समस्या हो जाती है, कई बार तो हम बड़े बुजुर्गों में भूलने की समस्या को भी देखते हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में उन्हें श्रोता साथियों एक कह सकते हैं कि मजबूत सहारे की आवश्यकता होती है, और वो हम बन सकते हैं, यानी कि उनका परिवार।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ अगर बात करें कि बुजुर्गों का स्वास्थ्य संभालने के क्या उपाय हम अपनाएं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य को पहली जरूरत मानना होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि संतुलित और पौष्टिक भोजन हम उन्हें दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, बुजुर्गों का जो पाचन तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए उन्हें हल्का, पौष्टिक और सुपाच्य भोजन आप दें। भोजन में आप क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, ताजे फल, दालें और प्रोटीन, दूध और दही,
0: जी,
1: दलिया, खिचड़ी, सूखे मेवे भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा सीमित ही रखें साथियों।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर रहे हैं
1: जी।
0: और गीत से पहले हम कुछ ऐसे उपाय जान रहे थे जिससे हम बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छे से बनाकर रख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हमने जाना था कि हमें उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन देना है
1: जी हाँ।
0: साथ ही कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनसे उनको दूरी बनानी है और उनके भोजन में हमें क्या क्या शामिल करना है ये भी हम जान पाए थे
1: जी हाँ। कशिश,
0: यही मनीषा हमारे साथियों को हम बताना चाहेंगे कि नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अक्सर

0: के पास जाते हैं जब बीमारियां गंभीर हो जाती हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत जरूरी माना जाता है।
1: जी बिल्कुल कशिश।
0: श्रोता साथियों, जैसे कि कुछ ऐसी जांचें होती हैं जो बुजुर्गों को करवानी चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर टेस्ट, दांतों की जांच, हड्डियों की जांच और हृदय जांच।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, यदि कोई दवा चल रही है तो उसे समय पर देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है।
1: जी,
0: जिसके कारण उन्हें जो संक्रमण होता है या फिर जो बीमारियां होती है वो जल्दी अपनी चपेट में ले लेती है। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल कशिश। इसी के साथ हम देखते हैं कि नियमित व्यायाम और योग भी करना चाहिए। बढ़ती उम्र में शरीर को सक्रिय रखना बहुत जरूरी है साथियों, इसलिए हल्का व्यायाम बुजुर्गों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इसके लिए आप कुछ व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि सुबह की सैर आप कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं और ध्यान या मेडिटेशन भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, योग और प्राणायाम मानसिक शांति भी देते हैं, इससे हमारा तनाव कम होता है और हमें नींद भी अच्छी आती है।
0: बिल्कुल
1: साथ ही श्रोता साथियों, हमें मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कई बार कशिश हम देखते हैं कि बुजुर्ग शारीरिक रूप से तो नहीं बल्कि मानसिक रूप से ज्यादा परेशान होते हैं।
0: बिल्कुल
1: उन्हें लगता है कि अब परिवार में उनकी जरूरत कम हो गई है, यह भावना उन्हें अंदर से तोड़ने लगती है। तो श्रोता साथियों, इसके लिए हमें उनसे बातचीत करनी है, उनकी राय हमें लेनी है, उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं करने देना है।
0: बिल्कुल
1: पुरानी यादों को उनकी सुने, बच्चों के साथ समय बिताने का प्रयास करें साथियों, इससे प्रेम और सम्मान भी बढ़ेगा। साथ ही श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं होता, आत्मसम्मान का भी होता है साथियों। यदि घर के बुजुर्गों को सम्मान मिले कशिश, तो वे मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहेंगे। आज कशिश हम देखते हैं कि कई घरों में बुजुर्ग अपेक्षाओं का शिकार हो जाते हैं, यह स्थिति बहुत दुखद है साथियों। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया है उन्हें बुढ़ापे में सहारा देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के अंत में हमारे दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, बुजुर्ग जीवन का वह पड़ाव है जहां व्यक्ति को सबसे अधिक अपनापन, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता होती है।
1: जी बिल्कुल
0: दोस्तों, उनकी सेवा केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमें यह समझना होगा मनीषा कि बुजुर्गों की देखभाल केवल उनके जीवन को लंबा नहीं करती
1: जी,
0: बल्कि उन्हें खुशहाल और सम्मानपूर्ण भी बनाती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को संकल्प लेना चाहिए कि साथियों, हम अपने घर के बुजुर्गों को समय भी देंगे, उनका सम्मान भी करेंगे और उनकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे।
1: जी
0: साथ ही उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है साथियों, वहाँ जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।
1: जी हाँ कोशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते

0: साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे स्वास्थ्य प्रद बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: जागृति बो, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
0: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मेरी आपसे बातचीत होगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गुण को लेकर बात करने जा रहे हैं जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जीवन की हर सफलता की नींव होता है, और वो है धैर्य। साथियों, आज की दुनिया तेज है, आप सभी जानते हैं, हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए, जल्दी सब कुछ चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन साथियों, जीवन की सच्चाई तो ये है कि जो चीजें जल्दी मिलती है वो अक्सर टिकती नहीं है। धीरे धीरे चलने वाला ही श्रोता साथियों दूर तक जाता है, और यही सच्ची बात है। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। तो कार्यक्रम में मजा आएगा साथियों, क्योंकि गीत संगीत भी कार्यक्रम में रहेंगे। और गीत संगीत से मुझे याद आया कि शुरुआत में भी पहले मैं आपको मनोरंजन करवाती हूँ एक गीत के साथ में। तो साथियों, आज भी सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा आपका अपना रेडियो, आपकी अपनी आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गुण की जो दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन में महत्व बहुत रखता है, और वो गुण है धैर्य का गुण। साथियों, हम देखते हैं कि धैर्य का मतलब है मुश्किल समय में टूटना नहीं, परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। लेकिन साथियों, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो मुश्किल समय को भी आसान बना देती है। हम देखते हैं साथियों कि जब हम अपने जीवन में धैर्य रखते हैं तो हम हर परिस्थिति को समझदारी से देख पाते हैं। हम जल्दबाजी में कभी गलत फैसले नहीं लेते श्रोता साथियों, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ते जाते हैं, और वो कैसे, क्योंकि हम धैर्य के गुण को अपनाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि आज के समय में धैर्य के गुण की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि साथियों आप खुद ही मुझे ये बताइए कि आपने कहीं धैर्य रखने वाला व्यक्ति देखा है, और अगर देखा भी है और गलती से हमें कहीं मिल भी गया तो लोग उसे पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हैं और उससे उसका धैर्य भी खत्म हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले, हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश सफल हो, हम चाहते हैं साथियों कि कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में न आए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जो इंतजार करना नहीं जानते वे सफलता की गहराई को भी कभी नहीं समझ पाते। कई बार श्रोता साथियों,

सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि परिणाम देर से मिलने वाला है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि परिणाम देर से नहीं मिलता, वह श्रोता साथियों सही समय पर मिलता है और उस सही समय का हम इंतजार नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है श्रोता साथियों हमारे लिए, क्योंकि धैर्य जैसा गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए जो कि वर्तमान में हमें कहीं नहीं देखने को मिलता। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि धैर्य और सफलता का बहुत ही गहरा संबंध होता है। वो कैसे? तो साथियों हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य छुपा होता है, ऐसा हमने सुना भी है और देखा भी है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता श्रोता साथियों, उसके पीछे उसके कई वर्षों की मेहनत, ढेर सारे संघर्ष और कई दिनों का धैर्य होता है साथियों। और आपने सुना भी होगा कि बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर साथियों किसान बीज बोने के अगले दिन ही फल की उम्मीद करे तो क्या कभी वह सफल हो सकता है? नहीं हो सकता ना श्रोता साथियों, क्योंकि बीज बोने के बाद भी तो पौधा बनता है और पौधे के बाद पेड़ बनता है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में सफलता चाहिए श्रोता साथियों, तो आपको धैर्य को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो दोस्तों जैसा कि बातें मेरी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत अच्छी चल रही है और हम जान पा रहे हैं कि आज के समय में धैर्य जैसे गुण की हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन श्रोता साथियों हम प्रयास करेंगे, हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाएंगे तो कह सकते हैं कि धैर्य का गुण हमें सब में देखने को मिलेगा और हम अपने जीवन में सफल भी हो पाएंगे। तो श्रोता साथियों बातें आगे कार्यक्रम में और होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और बढ़ते हैं साथियों फिर से हमारे विषय की ओर। जैसा कि हम धैर्य के गुण को लेकर बातचीत कर रहे थे और गीत से पहले हमने जाना था कि आज के समय में धैर्यपूर्ण व्यक्ति हमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, और अगर कहीं मिल भी गए तो लोग उन्हें ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं जिससे उनका धैर्य भी खत्म हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि धैर्य रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अगर हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कह सकते हैं कि हम सफलता के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, वर्तमान में सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता एक ऐसी कह सकते हैं कि चीज है जिसे अगर हमने नहीं पाया या फिर हमें वो नहीं मिली तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन ही बेकार है। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि सफलता पाने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी, और धैर्य के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो साथियों, अब जानते हैं कि धैर्य हमें क्या सिखाता है। साथियों, धैर्य हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जैसे कि हमें शांत रहना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और मजबूत बनना। हमें सही निर्णय लेने में भी धैर्य मदद करता है साथियों, और हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी देता है। क्योंकि श्रोता साथियों, किसी ने सही कहा है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे मजबूत होता है। जब हम धैर्य रखते हैं श्रोता साथियों, तो हम हर समस्या को एक नए नजरिए से देखते हैं। हम घबराते नहीं हैं, बल्कि समाधान ढूंढने के प्रयास करते हैं। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से ये जान पाए हैं कि धैर्य हमें क्या क्या सिखाता है। अब यहीं अगर बात करें धैर्य की परीक्षा की, तो साथियों जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमारा धैर्य परीक्षा में होता है। वो कैसे? तो जब मेहनत का फल हमें नहीं मिलता तो हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती है तब भी हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, और जब लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं श्रोता साथियों, तब भी धैर्य के गुण की परीक्षा होती है। ऐसे समय में दोस्तों मन करता है हार मान लेने का, और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन साथियों, वही सही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, और धैर्य अगर हमारे पास है तो हमें किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं साथियों। क्योंकि दोस्तों, अगर धैर्य है तो कठिन समय भी आएगा, और जो कठिन समय है वो हमें धैर्य के साथ मजबूत बनाता है। अगर हम श्रोता साथियों उस समय टिक जाते हैं तो हम खुद को और मजबूत बना लेते हैं, और यही हमारे धैर्य की पहचान है श्रोता साथियों। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि धैर्य की परीक्षा में सफल होना बहुत जरूरी है, और जो इस परीक्षा में सफल हो गया श्रोता साथियों, तो वो तो आप समझ लीजिए कि जीवन रूपी समंदर में नैया पार हो गई। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि आपको अपने जीवन में धैर्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसा गुण है श्रोता साथियों जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अब श्रोता साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि आप धैर्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन धैर्य को हम अपने जीवन में विकसित कैसे करें? बिल्कुल, वो भी मैं अगर आपको बताऊं साथियों, तो धैर्य एक दिन में कभी नहीं आता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। इसे श्रोता साथियों धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। वो कैसे? तो खुद पर भरोसा रखे, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे साथियों, जल्दबाजी करने से आपको बिल्कुल बचना है, और हर स्थिति को समझने की कोशिश करनी है और फिर ही प्रतिक्रिया देनी है। क्योंकि साथियों, धैर्य जैसे गुण अभ्यास से आते हैं, और अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। इसलिए श्रोता साथियों, जब हम खुद को समय देते हैं तो हम खुद के लिए बेहतर बन रहे होते हैं, और जब हम बेहतर बन जाते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए साथियों, याद रखें कि धैर्य वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है साथियों। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए श्रोता साथियों कि हर बड़ी सफलता के पीछे लंबा इंतजार होता है, इसलिए धैर्य रखिए, सही समय जरूर आएगा। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने ये जाना कि धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, ये हमें मजबूत बनाता है, हमें सही दिशा देता है और हमें सफलता तक भी पहुंचाता है। तो श्रोता साथियों, आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब धैर्य और मेहनत साथ होते हैं तो सफलता निश्चित होती है श्रोता साथियों। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए साथियों, धैर्य जैसे गुण को मत खोइए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।
तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी मेरी आपसे पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

तो साथियों, जैसा कि आप सुन रहे थे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, और आज का हमारा विषय भी बहुत ही प्यारा सा था, धैर्य के गुण को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार साथियों।

0: कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
0: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बोल, आपने कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बोल, हूँ था का?
3: अरे जागृति बोल, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोल, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोल, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोल, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोल, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत का विषय रहने वाला है कि तनाव भरी जिंदगी में मुस्कान की जरूरत क्यों पड़ती है।
0: जी हाँ,
1: तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज का युग तेज रफ्तार वाला है, प्रतिस्पर्धा वाला है, जिम्मेदारियों का युग है। मनीषा,
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहा है। कोई पढ़ाई को लेकर चिंतित है, कोई नौकरी को लेकर परेशान है, तो कोई पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे वातावरण में मनुष्य धीरे धीरे मुस्कुराना भूलता जा रहा है, चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही है और मन में निराशा घर करती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इस तनाव भरी जिंदगी में यदि कोई चीज इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है तो वो है मुस्कान।
0: जी हाँ,
1: मुस्कान केवल चेहरे की सजावट नहीं है श्रोताओं, बल्कि आत्मा की रोशनी है और ये जीवन को हल्का, सुंदर और आशावादी बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रुत। दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके थे कि आज हम बात करने वाले हैं तनाव भरी जिंदगी में मुस्कान की जरूरत क्यों है। जागृति जी, हम देखते हैं कि आज का समय भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारियों से भरा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता, दबाव, परेशानी से गुजर रहा है। किसी को नौकरी की चिंता है तो किसी को पढ़ाई की, किसी को परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है तो कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है। श्रोता साथियों, आधुनिक जीवन ने इंसान को सुविधाएं तो बहुत दी है, लेकिन मन की शांति कहीं पीछे छूटती जा रही है। जागृति जी, ऐसे समय में यदि कोई चीज हमारे जीवन को हल्का, सुंदर और सकारात्मक बना सकती है जागृति जी, तो वो है मुस्कान।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने बताया था कि मुस्कान केवल चेहरे की सजावट नहीं होती, वही बल्कि यह श्रोता साथियों हमारी ताकत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का प्रतीक होती है।
1: जी हाँ,
0: एक छोटी सी मुस्कान किसी के दुख को कम कर सकती है साथियों, रिश्तों में मिठास ला सकती है और तनाव भरे माहौल को भी खुशहाल बना सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जागृति जी, कहा जाता है कि मुस्कान जीवन का सबसे सुंदर आभूषण है। आज के समय में हम देखते हैं कि तनाव हर उम्र के लोगों के जीवन में बढ़ता जा रहा है। श्रोता साथियों, बच्चे पढ़ाई के दबाव में, युवा भविष्य की चिंता में, बुजुर्ग अकेलेपन से परेशान हैं। ऐसे में मुस्कान और दूसरों को मुस्कान देना हमारे जीवन को सरल और सुखद बनाने का सबसे आसान उपाय है।
1: बिल्कुल मनीषा, जैसे कि हम मुस्कान को लेकर बात कर रहे हैं, तो मुस्कान वो शक्ति है जो दुख में भी आशा जगाती है। श्रोताओं, जैसे कि मनुष्य के जीवन में तनाव का होना स्वाभाविक बात है, कभी भी तनाव हमारे जीवन में आ जाता है, हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात को भी लेकर हम तनाव में आ जाते हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ती है मनीषा, सपने बड़े होते हैं और संघर्ष कठिन होते हैं, तब मन पर दबाव बढ़ता है।
0: जी हाँ,
1: कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: वो अकेलापन महसूस करता है और जीवन उसे बोझ लगने लगता है। ऐसे समय में मुस्कान एक ऐसी दवा का काम करती है, जब इंसान मुस्कुराता है तो उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है, चेहरे की मुस्कान भीतर से सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है।
0: जी हाँ,
1: और व्यक्ति को एहसास दिलाती है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती है। कहा भी क्या है कि जहाँ मुस्कान रहती है वहाँ निराशा नहीं टिक पाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोताओं आपसे यही कहना चाहेंगे कि मुस्कान का सबसे बड़ा गुण यह है कि ये बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है।
0: जी हाँ जागृति जी,
1: एक सच्ची मुस्कान किसी उदास व्यक्ति के मन में भी उम्मीद जगा देती है। मनीषा, कई बार जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, कोई उसके सामने प्यार से मुस्कुरा देता है, तो उसका आधा दुख तो अपने आप ही कम हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि मुस्कान रिश्तों को मजबूत भी बनाती है और दिलों के बीच की दूरी को कम करती है। इसलिए कहा जाता है कि मुस्कान सबसे सस्ती लेकिन सबसे कीमती भेंट है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तनाव ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को दबाव, चिंता या डर में महसूस करता है। जब हमारे मन के अनुसार श्रोता साथियों काम नहीं होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है या समस्याएं लगातार हमारे सामने आती रहती है, तब मन और शरीर दोनों थकने लगते है। जागृति जी, स्थिति हमारे जीवन में तनाव होती है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में तनाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि काम का अत्यधिक दबाव, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक कलह, पढ़ाई और प्रतियोगिता।

0: उसके साथ करता है। इसीलिए मुस्कान केवल खुशी का परिणाम नहीं है बल्कि खुशी पाने का माध्यम है।
1: जी हाँ जागृति जी, जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मुस्कान इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है।
0: बिल्कुल,
1: ये बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है साथियों। एक सच्ची मुस्कान सामने वाले के दिल को छू लेती है।
0: हाँ।
1: मुस्कुराने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों को आकर्षित करता है साथियों, क्योंकि उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि जब व्यक्ति मुस्कुराता है तो उसके मन का बोझ समय के साथ कम हो जाता है। मुस्कुराने से श्रोता साथियों मन को शांति मिलती है और हमारी चिंताएं भी कम हो जाती। श्रोता साथियों, जब मुस्कान होती है वहाँ प्यार और अपनापन होता है। मुस्कुराकर बात करने से हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि मुस्कुराने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी दिखाई देता है, उसकी बातों में सकारात्मकता होती है और लोग उसके साथ सहज महसूस करते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, एक मुस्कान उदास माहौल को भी खुशहाली से भर देती है। घर, स्कूल, ऑफिस, समाज, हर जगह श्रोता साथियों मुस्कान का असर दिखाई देता है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि मनीषा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि तनाव भरी जिंदगी में मुस्कान की जरूरत क्यों है, तो ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन हम अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि मनीषा हमारी गीत से पहले श्रोता साथियों से बातचीत चल रही थी कि तनाव भरी जिंदगी में मुस्कान की जरूरत क्यों पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, जैसे कि अगर ये बातों को हम आगे बढ़ाते हुए बातें करें तो मुस्कान का सबसे बड़ा गुण यही कि बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है। आज हम देखते हैं मनीषा कि समय में लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इतने भाग रहे हैं कि वे मानसिक शांति को ही खोते जा रहे हैं। महंगे घर है, बड़ी गाड़ियां हैं, ऊंची नौकरियां होने के बाद भी यदि चेहरे पर मुस्कान नहीं है श्रोताओं, तो वो जीवन अधूरा है। असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं मिलती हमें, बल्कि भीतर की संतुष्टि से मिलती है। मुस्कुराने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता मनीषा।
1: जी हाँ।
0: वो हर समस्या का सामना साहस के साथ करता है। इसलिए मुस्कान केवल खुशी का परिणाम नहीं है, बल्कि खुशी पाने का माध्यम है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तनाव के समय व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में मुस्कान मन को संभालने का काम करती है। साथियों, मुस्कुराने से दिमाग में सकारात्मक भाव पैदा होते हैं, जिससे श्रोता साथियों चिंता कम महसूस होती है। साथ ही हम देखते हैं कि वैज्ञानिक रूप से भी यह माना गया है कि मुस्कुराने से शरीर अच्छे हार्मोन सक्रिय करता है।
0: बिल्कुल।
1: जो तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इससे रक्तचाप संतुलित रहता है और हमारा मन भी शांत रहता है। कई बार श्रोता साथियों हम देखते हैं कि मुस्कान किसी दूसरे के जीवन में उम्मीद जगा देती है। दुखी व्यक्ति भी मुस्कुराते चेहरे को देखकर अच्छा महसूस करता है।
0: बिल्कुल।
1: जागृति जी, हम देखते हैं कि आज तकनीकी और आधुनिकता ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन तनाव भी बढ़ा दिया है। लोग पहले की तुलना में अधिक व्यस्त हो गए हैं। परिवार के साथ समय कम बिताया जाता है। हर कोई सफलता की दौड़ में भाग रहा है। साथियों, आज छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई और प्रतियोगिताओं के दबाव में हैं। अच्छे अंक लाने की चिंता, माता पिता की अपेक्षाएं, मोबाइल के लिए लत और बचपन से ही उनकी मुस्कान को छीन लेती है। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि युवाओं को नौकरी, करियर और भविष्य की चिंता सताती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी को देखकर कई बार युवा साथी अपने आप को कम समझने लगते हैं।
0: जी हाँ।
1: यही अगर महिलाओं के तनाव की बात करी तो हम देखते हैं कि महिलाएं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाती हैं, परिवार की देखभाल करती हैं, बच्चों की चिंता, काम का दबाव उन्हें मानसिक रूप से थका देता है। ऐसे में साथियों मुस्कान उनके जीवन में नई ऊर्जा भर देती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्कुराना अगर हम सीख गए तो जिंदगी खुद पे खुद आसान लगने लगती है। श्रोताओं, आपसे यही कहना चाहेंगे कि विद्यार्थियों के जीवन में भी तनाव तेजी से बढ़ रहा है।
1: जी हाँ।
0: परीक्षा का दबाव रहता है, भविष्य की चिंता रहती है और प्रतिस्पर्धा ने बच्चों की मासूम मुस्कान को भी छीन लिया है। कई बार हम देखते हैं मनीषा कि विद्यार्थी असफलता से डरने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: ऐसे समय में यदि वे सकारात्मक सोच और मुस्कान को अपनाएंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। मुस्कान व्यक्ति को विश्वास दिलाती है श्रोता साथियों कि हर समस्या का हल संभव है।
1: बिल्कुल।
0: यही विश्वास आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। परिवार में भी मुस्कान का बहुत महत्व होता है। आज हम देखते हैं कि कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन हमारे श्रोता साथियों से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, समय ऐसे ही निकल रहा है। अगर हम परिवार के साथ बैठकर बातचीत कर हंसी निकाल कर हमारे दिन की शुरुआत करें, या रात को हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे घर में, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, तो ये हमारे स्वास्थ्य में भी असर करता है।
1: जी हाँ।
0: कई बार ऐसा होता है कि इंसान हंसना ही भूल जाता है, लेकिन श्रोता साथियों हमारे काम तो रोज के हैं। हमें, चाहे हम घर पर काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, या करियर की चिंता होगी, ये सारी चीजें तो हमारी रोज की लगी रहती है, लेकिन उसमें भी हम ये समय निकालकर बातचीत करेंगे, एक दूसरे का माहौल, एक दूसरे के सुख दुख को बांटेंगे, हंसी निकालेंगे, तो ये हमारे घर परिवार के माहौल को भी अच्छा करेगा, साथ ही हमें और अच्छी सकारात्मकता देगा जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम कह सकते हैं मनीषा कि लोग आपस में गुस्से से बात करें और हर समय शिकायतें करें तो घर में हमेशा यूं लगता है कि ये हमारा घर नरक के समान हो गया है। वही यदि परिवार के सदस्य प्रेम और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत करेंगे तो हमारा जो घर है वो स्वर्ग जैसा बन जाता है। मुस्कान रिश्तों में मिठास घुलती है श्रोता साथी और मन मुटाव को कम करती है। इसलिए एक मुस्कुराता हुआ परिवार समाज को भी सकारात्मक दिशा दे सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि मुस्कान केवल चेहरे पर नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: बल्कि यह मन की सोच से जुड़ी होती है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता है। यदि इंसान हर समस्याओं को अंत समझने के बजाय श्रोता साथियों सीख समझे तो उसका मन हल्का रहने लगता है। मुस्कान ही सकारात्मक सोच सोच की पहचान होती है। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वे जल्दी हार नहीं मानते, दूसरों को प्रेरित करते हैं, तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, जीवन में खुश रहना सीखते हैं साथियों। और साथ ही हम देखते हैं कि मुस्कान का साथ ही वो हमारे समाज में भी मुस्कान को फैलाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मुस्कान केवल श्रोता साथियों व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है। मुस्कुराकर बात करने से लोगों के बीच की दूरी कम हो जाती है, समाज में भाईचारा और अपनापन भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: गुस्से और तनाव से विवाद बढ़ते हैं साथियों, जबकि मुस्कान कई समस्याओं को शांत कर सकती है। जो व्यक्ति खुश रहता है वह दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है हमेशा।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि घर की सच्ची सुंदरता अपनी अपनों की मुस्कान में बसती है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि कार्यस्थल पर भी मुस्कान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर काम करता है वो अपने साथियों को भी प्रेरित करता है, उसका व्यवहार दूसरों के लिए सहज और सुखद बन जाता है। हम देखते हैं मनीषा कि तनाव के वातावरण में भी उसकी मुस्कान उम्मीद की किरण बनती है। इसके विपरीत हमेशा गुस्सा और चिंता में रहने वाला व्यक्ति स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि मुस्कुराने की आदत भी जरूरी है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ,

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे, तनाव भरी जिंदगी में मुस्कान की क्यों जरूरत है। जागृति जी, हम देखते हैं कि हर खुशी बड़ी नहीं होती। कभी परिवार के साथ चाय पीना, बच्चों की हंसी को सुनना, दोस्तों के साथ बात करना, ये भी हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, कई लोग सोचते हैं कि केवल मेहनत ही सफलता की होती है, लेकिन सकारात्मक व्यवहार श्रोता साथियों मुस्कान की सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं कि मुस्कुराने वाला व्यक्ति लोगों के बीच अच्छे संबंध बनाता है, आत्मविश्वास से बात करता है और कठिन परिस्थितियों में भी शांत बना रहता है। इसीलिए श्रोता साथियों, नौकरी, व्यवसाय, सामाजिक जीवन, हर जगह मुस्कान व्यक्ति की पहचान बन जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि इतिहास और समाज में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का राज है मुस्कान। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम और भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, एक गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। वो हमेशा परेशान और उदास रहता था। मनीषा, नौकरी की उसे हमेशा चिंता रहती थी, परिवार की जिम्मेदारियां भी थी और असफलताओं ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। एक दिन गाँव के एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा जीवन में समस्या है तो सबके होती है, लेकिन मुस्कान उन्हें हल्का कर देती है। रमेश ने उस दिन से तय कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो मुस्कुराना नहीं छोड़ेगा।
0: जी हाँ,
1: धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा, लोग उससे जुड़ने लगे, उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा और कुछ समय बाद उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। तब उसे समझ आया कि मुस्कान केवल चेहरे नहीं बदलती बल्कि किस्मत भी बदल देती है। इसलिए श्रोता साथियों, कहा गया है कि मुस्कान वो दीपक है जो अंधेरों में भी रोशनी फैलाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कई गरीब लोग कठिन समय के बावजूद भी खुश रहते हैं, क्योंकि वे छोटी छोटी खुशियों में भी महत्व ढूंढ लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि कई अमीर लोग जो सुविधाओं के बावजूद भी तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में संतोष और मुस्कान की कमी होती है। इससे श्रोता साथियों, हमें यह सीख मिलती है कि खुशी केवल धन से नहीं बल्कि सकारात्मक सोच और मुस्कान से मिलती है। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। हर दिन कोई न कोई चुनौती हमारे सामने आएगी साथियों, लेकिन यदि हर परिस्थिति में मुस्कुराना हम सीख जाए तो जीवन हमें आसान लगने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी मुस्कान केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज को भी खुश रख सकती है। इसीलिए खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाइए।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि मुस्कुराना ही हमारे जीवन की रोशनी है और हमारे जीवन के तनाव भरे अंधेरों को दूर करता है। साथ ही हम साथियों को कहना चाहेंगे कि तनाव आज के जीवन की सच्चाई बन चुका है, लेकिन मुस्कान उससे लड़ने की सबसे सुंदर शक्ति है। मुस्कुराने से समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें सहने की ताकत जरूर मिलती है। मुस्कान वाला इंसान का मन हल्का रहता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में आशा जगती है। श्रोता साथियों, हमें समझना होगा कि जीवन केवल जिम्मेदारियों का नाम नहीं है बल्कि खुश रहना भी उतना ही जरूरी है। यदि हम छोटी छोटी बातों में जागृति जी खुशियां ढूंढना सीख जाएं और हमारे आदत बना ले मुस्कुराने की, तो हमारे जीवन में तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा और हमारा जीवन ही वो सरल और सुंदर बन सकता है।
1: जी हाँ मनीषा, क्योंकि आज सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने भी लोगों को तनावग्रस्त बना दिया है। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे की सफलता देखकर स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तुलना की इस दौड़ में वे अपनी खुशी को खो देते हैं। श्रोताओं, ऐसे समय में मुस्कुराना और अपने जीवन को स्वीकार करना बहुत जरूरी हो गया है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग है। श्रोताओं, यदि इंसान छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराना सीख जाए तो उसका जीवन और अधिक सुंदर बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं मनीषा कि हमें अपने जीवन में मुस्कान को आदत बनाना होगा। श्रोताओं, सुबह उठते समय, लोगों से मिलते समय और कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने का प्रयास करना होगा।
0: जी हाँ जागृति जी,
1: ये जरूरी नहीं श्रोताओं कि जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन श्रोताओं ये जरूरी है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे, क्योंकि मुस्कान हमें यही सिखाती है कि अंधेरी रात के बाद नई सुबह जरूर आती है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं श्रोताओं कि तनाव भरी जिंदगी में मुस्कान किसी वरदान से कम नहीं। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार हम आपको मुस्कुराने की वजह के बारे में बता रहे हैं कि मुस्कुराना हंसना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: ये जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाती है, रिश्तों में मिठास भरती है और मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है।
0: जी हाँ,
1: मुस्कान वो शक्ति है श्रोता साथ जो टूटे हुए मन में भी उम्मीद जगा देती है। इसीलिए हम चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि मुस्कुराने वाला व्यक्ति केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपने अपने आसपास की दुनिया को भी रोशन कर देता है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज इंसान के पास कहीं सारे साधन हैं, लेकिन सुकून पहले से कहीं ज्यादा कम हो गया है। सुबह खुलने से लेकर रात तक सोने तक व्यक्ति कुछ न कुछ चिंता में उलझा रहता है। किसी को समय की कमी परेशान करती है, किसी को बढ़ती महंगाई, तो किसी को रिश्ते के टूटने की विश्वास की दुखी महसूस करती है। श्रोता साथियों, जीवन की इस भागदौड़ में इंसान धीरे धीरे मुस्कुराना भूलता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: चेहरे पर थकान दिखाई देती है और मन के भीतर अशांति और बेचैनी घर कर चुकी है। ऐसे समय में मुस्कान केवल एक भाव नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित रखने की एक कला बन चुकी है।
1: हाँ।
0: मुस्कुराना किसी समस्या से भागना नहीं है साथियों, बल्कि कठिन परिस्थितियों के बीच उम्मीद को जीवित रखना है। जब इंसान परेशानियों के बावजूद मुस्कुराना सीख जाता है, तब जीवन बोझ नहीं हल्का लगने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: मुस्कुराना एक ऐसी भाषा है साथियों, जिसे हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति को समझना होगा। यह बिना शब्दों के भी प्रेम, अपनापन और विश्वास का संदेश देती है। तनाव भरी जिंदगी में यही छोटी सी मुस्कान श्रोता साथियों, इंसान को टूटने से बचाती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है।
1: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि ये स्पष्ट होता है कि आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में मुस्कान केवल एक भाव नहीं है श्रोताओं, बल्कि जीवन जीने की कला भी है। परिस्थितियां कठिन हो आती हैं, सपने टूटने लगते हैं, अपने साथ छोड़ने लगते हैं और मन निराशा से भर जाता है, तब एक सच्ची मुस्कान इंसान को फिर से खड़े होने की ताकत देती है।
0: जी हाँ,
1: मुस्कान ये संदेश देती है श्रोता साथियों कि जीवन में अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, उम्मीद की एक किरण हमेशा बाकी रहती है। यही मुस्कान दुख को सहने की शक्ति बनती है और संघर्ष को आसान बना देती है। आज इंसान के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मन की शांति कहीं खोती जा रही है।
0: जी
1: हम देखते हैं कि लोग बड़ी सफलता पाने की दौड़ में अपने चेहरे की मुस्कान को खो बैठे हैं।
0: बिल्कुल,
1: रिश्तों में अपनापन कम हो रहा है, मन में अकेलापन बढ़ रहा है। ऐसे समय में मुस्कान ही वो पुल है श्रोता साथी, जो दिलों को जोड़ सकती है। इस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा न केवल अपने जीवन को रोशन करता है, बल्कि दूसरों के अंधेरे जीवन में भी उम्मीद की रोशनी भर देता है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम देखते हैं मनीषा कि किसी उदास व्यक्ति को दवाइयों से ज्यादा जरूरत किसी अपने की मुस्कान और प्यार भरे शब्दों की होती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से तनाव भरी जिंदगी में मुस्कान की जरूरत क्यों ही, इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं। ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। कुछ छोटी मोटी रही हैं, वो हम श्रोता साथियों से जरूर करेंगे, लेकिन क्यों ना अभी एक और गीत के साथ मनोरंजन कर लें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत।

0: लेता है। मुस्कान केवल चेहरे की सुंदरता नहीं बढ़ाती मनीषा, बल्कि मन की ताकत होती है, आत्मविश्वास होती है और उम्मीद का प्रतीक बन जाती है। जब इंसान मुस्कुराकर कठिनाइयों का सामना करता है तब समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों की नहीं है बल्कि सच्ची मुस्कानों की है, क्योंकि एक मुस्कान टूटे हुए दिल को सहारा दे सकती है, निराश मन में आशा जगा सकती है और थके हुए इंसान को फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। मुस्कुराने वाला व्यक्ति खुद भी खुश रह सकता है और अपने आसपास के वातावरण को भी खुशहाल बना सकता है। इसीलिए श्रोताओं, हमें अपने जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, मुस्कान का साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। यदि हर व्यक्ति मनीषा अपने चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान रखे, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में मिठास आएगी और समाज में सकारात्मकता फैलेगी। मुस्कान वो छोटा सा दीपक है श्रोताओं, जो जीवन के बड़े से बड़े अंधकार को भी रोशन कर सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, चाहे कठिन समय इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन हिम्मत और मुस्कान हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों आपको पता बताना चाहेंगे, ताकि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोताओं आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों आपकी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार
1: साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है दोस्तों 9460051234। तो साथियों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी है दोस्तों हमारे बीच पंटापुर सिटी से है, फिल्म का नाम है आशिकी, गीत के बोल है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेरा जहां और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों बुरखेड़ा से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन दहाटा, दिलीप सिंह पावर, दिशा कुशल जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच मस्तानापुरा से ही, फिल्म का नाम है दिलवाले। गीत के बोले दोस्तों कितना हसीन चेहरा। इस गीत के साथ चुनना चाह रहे अंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। मंजुका टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और संताना एमपी से उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों नेपाल नगर मध्य प्रदेश से है सुदय शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जिला भक्तपत से अब्दुल्ला संता आबासी जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से रुक करते हैं हमारे अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच पंटपुर से है। फिल्म का नाम है बलवान। गीत की बोला दोस्तों क्या चीज़ है मोहब्बत। इस गीत के साथ चुनना चाह रहे जाकिर मुलानी, सोमिया, सुभान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, बनो मुलानी, बादशाह जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। जिला बागपत से आसिर अली खान, मोमित नाज, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी और इस गीत के अनुरोध करता है साथियों। जिला बागपत से जगमोहन श्री प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी जी, अर्जुन भारतीय, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नितिन जी, प्यारी पोती भुवनेश्वरी जी। दिल्ली से है रामनाथ जी प्रजापत, श्रीमती सोनम देवी जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो दोस्तों, हमारी अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच आर्य नगर कुक्का बिलाई से ही। फिल्म का नाम है सौदागर। गीत के बोले दोस्तों, तेरा मेरा साथ रहे। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे उत्तम सिंह जंगेल, मोरम सिंह जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंजन जंगेल जी, सुकरी कला से अमित जंगेल, कुशल जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, महाराष्ट्र से संतोष जी, सुनैना जी, सुकन्या जी, सविता जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों जिला खरगोना मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समराज, आर्यन बेबी, आरोही, ऐशिका, अंजलि, सविता वर्मा जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है खलनायक और गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चली रे। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर, आरव और अर्पिता जी। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांबले पाटिल, राजीव राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल जी राजेश। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित जी आहूजा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चचेरी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल है पहली पहली बार मोहब्बत की है। इस गीत की फरमाइश करते हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे पटिया कला दुर्ग से संजीव शुद्धा सत्संग सीमा जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बुलडाणा से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन जी पाटिल। इस गीत की अनुरोध करता है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। सहारनपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं जॉन डेकेस्टो, रोजे डेकेस्टो, पल डेकेस्टो, विलेज डेकेस्टो। इस गीत की अनुरोध करता है रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से उभय भाल पाल, जयसिंह पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा जी पाल। इस गीत की अनुरोध करता है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, अमित कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे पीएच नेहावकर, निर्मला नेहावकर, विशाल नेहावकर। मलकापुर से जुड़ रहे हैं नारायण इगले, राजकुमार इगले, आशीष खर्चे जी। भेड़शोर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीपी कुटलेश जी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से जुड़ रहे हैं राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिर शेख, नाजिया नाशिर, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमीद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जी मुजावर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मिका, सृष्टि बन्ने, आरुष शौर्या, दिनेश जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, रिधानजी खुराना। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित जी आहूजा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, बीबी वेदई जोशी, हंसिका जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं जेवंती केवट जी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे रूपेश संगई, महेश संगई, ब्रिजेश संगई, प्रीतेजी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। गंजू द्वारा से जुड़ रहे हैं शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फेजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। जाकुत राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। सरगांव छत्तीसगढ़ से दूर जुड़ रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांशी वर्मा। अनारकली बाजार जगराव से जुड़ना चाह रहे हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीविका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, जयपाल जी यादव, विनोद पुरी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित राज, मोनू मानस जी राज। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बेबी अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत जी। कलानौर से जुड़ रहे नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। मदनपुर से जुड़ना चाह रहे श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयू सिक्का, कुनिका सिक्का, डुगुजी सिक्का। गंजू द्वारा गणेशपुर से जुड़ना चाह रहे हैं फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अलफेज। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हरमिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। बाबा कुटरी रायगढ़ से जुड़ रहे हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी, उत्कर्ष जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, सुप्रील जी धाड़े।
श्रीरामपुर से जुड़े हैं अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पूनावली पुणे से जुड़ना चाह रही अजय सोनोने, करिश्मा सोनोने, इविका सोनोने, विशाखा सोनवनी जी और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी, हिमांश जी। दादरी गेट भवानी से जुड़ना चाह रहे कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। बिलाड़ा राजस्थान से जुड़ना चाह रहे रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही पहली पहली बार मोहब्बत की है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागुड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथ चारधी भट्ट और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जी पारेश्वर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार का नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपको अपना सामुदायिक रेडियो वॉकर रेडियो 90.8 पर। श्रोताओं, लेकिन हाथी कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम हमारे वाक्य रहने वाले हैं परिवार में सम्मानजनक भाषा का क्या महत्व। जैसे कि मीठे शब्दों में ऐसी ताकत होती है जो टूटते रिश्तों को भी जोड़ती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, परिवार केवल ईंट और दीवारों से बना घर नहीं होता, प्रेम विश्वास सहयोग और अपना मन से बना हुआ संस्कार होता है जहाँ हर व्यक्ति अपने सुख दुख साझा करता है। परिवार की मजबूती केवल आर्थिक स्थिति या बड़े से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से तय होती है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार बात करते हैं।
1: बिल्कुल
0: सम्मानजनक भाषा परिवार के वातावरण को सुखद शांत और प्रेमपूर्ण बनाती है। जब परिवार के लोग एक दूसरे से आदर पूर्वक बात करते हैं तब घर में सकारात्मकता बनी रहती है और रिश्तों में मीठा आती है।
1: बिल्कुल चतुर्थ जी, आपने सभी कहा कि इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। तो साथियों, आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 पर आपके अपने साथ।

0: बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज का दिन सच्चा स्वराज में। और जैसा कि हमारी बातचीत चल रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि परिवार में सम्मानजनक भाषा का क्या महत्व होता है, तो अंजलि कहा भी गया है कि सम्मान जो शत्रु का व्यवहार हो तभी खुशहाल परिवार बनता है। और आज के समय में व्यस्त जीवन, तनाव और मोबाइल की दुनिया ने लोगों को चिड़चिड़ा दिया है। कई बार लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से कठोर शब्दों में बात कर बैठते हैं, छोटी सी बात पर गुस्सा करना हो जाता है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं या दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करते हैं। परिवार के रिश्तों को कमजोर बनाते हैं। इसके विपरीत हम धीरे धीरे परिवार में प्रेम और सम्मान से बात की जाए तो बड़े से बड़ा विवाह भी आसानी से सुलझ सकता है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि सम्मानजनक भाषा केवल शिष्टाचार नहीं है बल्कि अच्छे संस्कार और मजबूत समाज की पहचान है। जिस परिवार में संवाद से सम्मान होता है वहाँ प्यार भरोसा और समझ भी बनी रहती है। यही कारण है श्रोता साथियों कि परिवार में सम्मानजनक भाषा का महत्व केवल घर तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज की दिशा भी तय करता है। सम्मानजनक भाषा का मतलब है ऐसा बोलना जिसमें सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं, उम्र, अनुभव और सम्मान का ध्यान रखा जाए। इसमें विनम्र शब्दों का प्रयोग होता है, धीरे और संयमित आवाज में बात करना, कारीगरों से बचना, दूसरों के पास ध्यान से सुनना, तानी और अपमानजनक शब्दों की दूरी रखना और असहमति होने पर भी सभ्यता बनाए रखना। श्रोता साथियों, सम्मानजनक भाषा केवल शब्दों में नहीं बल्कि बोलने के तरीके और व्यवहार में दिखाई देती है।
0: परिवार में सम्मानजनक भाषा केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, छोटे सदस्यों के लिए भी बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी से ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं जिससे रिश्तों में दूरी आने लगती है। यदि बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करें और विनम्रता से बात करें तो परिवार में प्रेम और अनुशासन दोनों बना रहता है। इसी प्रकार बड़ों को भी बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनसे प्यार और सम्मान के साथ बात करनी होगी। जिसे हम कह सकते हैं कि सम्मानजनक भाषा परिवार में विश्वास बढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात बिना डर के सम्मान तो कह सकता है तब परिवार के सदस्य एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। वे अपनी समस्याएं साझा करते हैं और मिलकर समाधान ढूंढते हैं। लेकिन घर में हमेशा कठोर भाषा का प्रयोग हो तो लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने से डर रहते हैं। इससे मन में दूरी और तनाव आता है।
1: जी, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चा सबसे पहले बोलना अपने परिवार से सीखता है। घर का माहौल ही उसके संस्कारों की पहली पाठशाला है। अगर परिवार में प्यार से बातचीत, एक दूसरे की बात सुनी जाती है, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होता है तो बच्चे भी वही सीखते हैं। लेकिन घर में हर समय झगड़ा, चिल्लाना, अपमानजनक शब्द, ताने, कटु व्यवहार होता रहता है तो बच्चों के मन में डर, गुस्सा और असुरक्षा बनी रहती है। यानी कि परिवार की भाषा आने वाली पीढ़ी के व्यवहार में दिखती है। होना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हर रिश्ता संवाद पत्र का होता है। जहाँ शब्दों में सम्मान होता है वहाँ रिश्तों में अपनापन बना रहता है। एक मीठा सा शब्द गुस्सा शांत कर सकता है, दुख कम कर सकता है, टूटे रिश्ते बचा सकता है, विश्वास बना सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा इरादा गलत है, लेकिन कठोर शब्द सामने वाले को पहले चोट पहुँचा देते हैं। बिल्कुल कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सम्मानजनक भाषा रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की भावना को पैदा करती है।
0: बिल्कुल जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत चली गई है कि सम्मानजनक भाषा का क्या महत्व होता है।
1: जी हाँ।

0: कीर्तिमान प्रस्तुत करने हैं कालानी शिक्षा साम्राज्य में। जैसा कि किससे पहले चाहते थे हमें ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथी से कहना चाहेंगे कि पति पत्नी परिवार के नहीं होते हैं, अगर उनके बीच बातचीत सम्मानजनक हो तो पूरा परिवार शांत और खुशहाल होता है, लेकिन जब बातचीत में ताने अपमान गुस्सा अप्रिय ऊंची आवाज शामिल होते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों पर भी इसका सीधा असर होता है, वे डर तनाव और सुरक्षा महसूस करते हैं। इससे पति पत्नी के बीच सम्मानजनक संवाद केवल उनका निजी मामला नहीं है बल्कि पूरे परिवार के भविष्य की मानता है। बुजुर्ग परिवार का अनुभव होते हैं, ज्ञान होते हैं, लेकिन कई बार आप उनके साथ कठोर भाषा में बात करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनकी बात काट देना, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करना, ऊंची आवाज में जवाब देना, ये सब बुजुर्गों को मानसिक रूप से आहत करते हैं। सम्मानजनक भाषा बुजुर्गों को श्रोता साथी एहसास दिलाती है कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथी से हमें बोलना चाहेंगे कि श्रोता साथी मीठे शब्द विश्वास को बनाते हैं और कठोर वचन रिश्ते को उदार करते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में भी सम्मानजनक भाषा का बहुत महत्व है। पति पत्नी परिवार की नींव होते हैं, यदि वे एक दूसरे से आदर पूर्वक बात करें तो पूरा परिवार खुशहाल होता है। छोटी छोटी बातों पर ताना मारना, अपमान करना या गुस्से में जो कटु शब्द देना रिश्तों में बनाते हैं, लेकिन यदि पूर्ण धैर्य और सम्मान के साथ बात करें तो कठिन परिस्थितियां भी आसानी से पार की जा सकती है।
0: जी जी,
1: कहा गया है कि सम्मान से सींची रिश्तों के दो तभी प्रेम भरपूर होता है। इसी के साथ सारों साथी और बुजुर्ग परिवार का अनुभव और ज्ञान होते हैं, जैसा कि आपने बताया था, और उनसे सम्मानजनक भाषा में बात करने के लिए संस्कार उनसे जरूरी हमारे जिम्मेदारी है।
0: जी,
1: सम्मानजनक भाषा के जो शब्दों तक नहीं रिश्ता बल्कि इसमें हमारी भावना भी शामिल होती है। कई बार व्यक्ति मीठे शब्द तो बोलता है लेकिन उसके व्यवहार में सम्मान नहीं होता।
0: जी,
1: सच्चा सम्मान तभी माना जाता है जब हमारे शब्द और व्यवहार दोनों अच्छे हों। मुस्कुरा कर बात करना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और उनकी भावनाओं को समझना भी सम्मानजनक व्यवहार कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छे शब्द और अच्छा व्यवहार यही है रिश्तों का सच्चा श्रृंगार।
0: बिल्कुल चाहते जी, परिवार समाज की पहली इकाई है। अगर परिवार में भाषा खराब होगी तो समाज में भी तनाव और असभ्यता बढ़ेगी। आज सड़क पर होने वाले झगड़े, सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियाँ और छोटी बात पर बढ़ता गुस्सा इस बात का संकेत है कि संवाद में धीर और सम्मान कम होता जा रहा है। सम्मानजनक भाषा सामाजिक सुहाग बनाती है, विवाद कम करती है, सहयोग की भावना बनाती है और समाज में शांति बनाए रखती है। अच्छे समाज की शुरुआत घर से ही होती है। मोबाइल सोशल मीडिया के दौर में लोग जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, कई बार लोग बिना सोचे कठोर शब्द लिख देते हैं, धीरे धीरे यही आदत वास्तविक जीवन में भी दिखाई देती है।

0: युवा इंटरनेट से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर उन्हें घर में सम्मानजनक सम्मान नहीं मिलेगा तो वे सोशल मीडिया की नकारात्मक भाषा को सामान्य मान सकते हैं, फिर से परिवार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ चल रहे हम देखते हैं कि कई बार आर्थिक परेशानियां, काम का दबाव और मानसिक तनाव लोगों को चिड़चिड़ा बना देता है। वे गुस्से में गलत शब्द बोल देते हैं, लेकिन समस्या ये है कि गुस्से में बोले गए शब्द लंबे समय तक रह सकते हैं। एक कठोर वाक्य आत्मविश्वास तोड़ सकता है, रिश्ते कमजोर कर सकता है और बच्चों के मन में डर पैदा कर सकता है। इसलिए जरूरी है श्रोता साथियों कि तनाव के समय में सम्मान में सही रखा जाए।
1: जी हाँ जी, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम कहना चाहेंगे कि श्रोता के सम्मानजनक भाषा समाज में भी परिवार की पहचान बनाती है। जिस परिवार के सदस्य विनम्र और आदरपूर्ण होते हैं लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे परिवार में संस्कार और एकता दिखाई देती है, बल्कि विपरीत जहाँ लोग हमेशा झगड़ते हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ सम्मान कम हो जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बताते हैं कि एक परिवार में पिता बहुत गुस्से से भागते थे। वे छोटी छोटी बातों पर बच्चे और पत्नी को डांट देते थे। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था, बच्चे उनसे डरते थे और पत्नी भी दुखी रहती थी। एक दिन श्रोता उनके छोटे बेटे ने स्कूल से आकर कहा, पापा टीचर ने बताया कि मीठे शब्द सबसे बड़ी ताकत होते हैं। बेटे की यही बात अंजलि पिता के दिल को छू गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। अब अपने व्यवहार की वजह से प्यार और सम्मान से बात करने लगे। कुछ ही समय में घर का माहौल ही बदल गया। जहाँ पहले तनाव था वहाँ अब हंसी और खुशी थी। इस घटना ने पूरे परिवार को सिखाया कि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। कहा गया है कि कटु वचन दिल को तोड़ते हैं और मीठे शब्द में चमत्कार होता है। तो हमें भी समझना होगा कि शब्द वापस नहीं दिए जा सकते। एक बार बोले गए कटु शब्द किसी के दिल को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचने की आदत डालनी होगी। यदि गुस्सा आए भी तो शांत होकर बात करनी होगी। धैर्य और विनम्रता परिवार को टूटने से बचाते हैं।
0: बिल्कुल जागरूक होंगे, सम्मानजनक भाषा केवल अच्छे शब्द बोलने की आदत नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ परिवार और सभ्य समाज की पहचान है। परिवार में बोले गए शब्द बच्चों के संस्कार, रिश्तों की मजबूती और समाज की संस्कृति तय करती है। बिल्कुल कटु शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि सम्मानजनक भाषा टूटे मन को भी जोड़ सकती है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां संवेदनशील, जिम्मेदार और संस्कारी बने तो उसकी शुरुआत घर से संवाद से करनी होगी। हमें समझना होगा कि परिवार का वातावरण केवल सुविधाओं से अच्छा नहीं बनता, बल्कि वहाँ बोले जाने वाले शब्दों से बनता है। जहाँ संवाद में सम्मान होता है वहाँ रिश्तों में विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहीं मजबूत परिवार और मजबूत समाज का निर्माण होता है। जी हाँ, जिन्हें कभी कहा भी गया है कि सोच समझ कर ही उन्हें बात को बोलनी चाहिए। और सम्मानजनक भाषा परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है। यही रिश्तों को मजबूत बनाती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है और उनके वातावरण को सुखद बनाती है।
1: बिल्कुल, मीठे और आदरपूर्ण शब्द किसी भी परिवार को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। इसलिए श्रोता हमें हमेशा अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम, धैर्य और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। यही खुशहाल और मजबूत परिवार की पहचान है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई है, अब समय भी चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।

0: इसके साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें हुई कार्यक्रम शिक्षा स्वराज के माध्यम से आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले के संगीत कैसे लगे उसके लिए आप हमें नए सुझाव पहुँचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम शिक्षा स्वराज, बागा रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, बागतरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन

पुष्प प्रसाद से फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय इतने विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जीत महर्षि और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को नमस्कार।

0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं नए विषय को लेकर।
1: जी हाँ,
0: आज के कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। मनीषा, आज हम जिस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातचीत करने वाले हैं वो विषय है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका स्वास्थ्य हम कैसे संभाल के रखें।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे मुकाबले बहुत कम होती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में उन्हें कई बीमारियाँ बहुत जल्दी घेर लेती हैं, इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में है। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी है कि आज हम बात करने वाले हैं घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: कोशिश हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, बचपन युवावस्था फिर बुजुर्ग अवस्था, हर पड़ाव अपने साथ नई जिम्मेदारियों और अनुभव लेकर आते हैं।
1: जी हाँ,
0: जिस प्रकार बचपन में बच्चों को सहारा और देखभाल की आवश्यकता होती है साथियों, उसी प्रकार बुजुर्ग अवस्था में भी व्यक्ति को प्रेम सम्मान और स्वास्थ्य संबंधित विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: घर के बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते हैं कशिश, बल्कि अनुभव संस्कार और जीवन ज्ञान का खजाना होते हैं। उनकी उपस्थिति घर को दिशा देती है और परिवार को मजबूती प्रदान करती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा।
0: साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज के समय में बदलती जीवन शैली भागदौड़ तनाव और अकेलेपन के कारण बुजुर्गों का स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। कई बार परिवार में लोग यह समझ नहीं पाते कि बुजुर्गों की सही देखभाल कैसे करें।
1: जी
0: केवल दवाइयाँ देना ही स्वास्थ्य की देखभाल करना नहीं निकाला है, बल्कि उनके शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए श्रोता साथियों घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य कैसे संभालें यह विषय केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना का एक विषय है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी विषय को लेकर आज हम हमारे जो श्रोता साथियों से बातचीत कर रहे हैं, दोस्तों हम देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो हमारे परिवार की नींव होते हैं।

0: किसी भी घर की वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उस घर में बुजुर्ग कितने सम्मान और सुख से रह रहे हैं।
1: जी हाँ कोशिश, इसी के साथ अगर बात करें कि बुजुर्ग में

0: होने वाली सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं। तो श्रोता साथियों, बुजुर्ग अवस्था में शरीर में कई प्राकृतिक परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों के कारण कुछ सामान्य बीमारियां भी श्रोता साथियों देखने को मिलती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। श्रोता साथियों, उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो जाती है। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। साथ ही श्रोता साथियों, गलत खान पान और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण बुजुर्गों को शुगर जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। देखते हैं घुटनों का दर्द, गठिया, कमर दर्द और भी कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। श्रोता साथियों, कम दिखाई देने वाला मोतियाबिंद सुनने में परेशानी कारण बन सकता है, उम्र के साथ बढ़ता रहता है। साथी विशेष हम देखते हैं कि आज वह बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं, परिवार का समय न मिलना उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। कुछ बुजुर्गों में श्रोता साथियों याददाश्त कमजोर होने भी लग रही है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने बताया कि उन्हें मधुमेह की समस्या हो जाती है, कई बार तो हम बड़े बुजुर्गों में भूलने की समस्या को भी देखते हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में उन्हें श्रोता साथ में कह सकते हैं कि मजबूत सहारे की आवश्यकता होती है और वो हम बन सकते हैं, यानी कि उनका परिवार।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ अगर बात करें कि बुजुर्गों का स्वास्थ्य संभालने के क्या उपाय हम अपनाएं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य को पहले जरूरत मानना होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि संतुलित और पौष्टिक भोजन हम उन्हें दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बुजुर्गों का जो पाचन तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए उन्हें हल्का पौष्टिक और सुपाच्य भोजन आते हैं। भोजन में आप क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, ताजे फल, दालें, रोटी, दूध और दही,
0: जी
1: दलिया, खिचड़ी, सूखे मेवे भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा सीमित ही रखें साथियों।
0: जी हाँ,
1: और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उन्हें नहीं खिलानी है, जैसे कि ज्यादा तेल और मसाले वाला खाना, बहुत मीठा भोजन, जंक फूड से बिल्कुल बुजुर्गों

0: जिसके कारण उनमें कमजोरी बढ़ जाती है। जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल रही हैं और ये बातें आगे भी हम ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल,

0: जैसा कि श्रोता साथियों बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर रहे हैं
1: जी,
0: और इससे पहले हम कुछ ऐसे उपाय जान रहे थे जिससे हम बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छे से बनाकर रख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हमने जाना था कि हमें उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन देना है।
1: जी हाँ,
0: साथ ही कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे उनको दूरी बनानी है और उनके भोजन में हमें क्या क्या शामिल करना है ये भी हम जान पाए थे।
1: जी हाँ कशिश,
0: यही मनीष हम हमारे साथियों को बताना चाहेंगे कि नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमारियां गंभीर हो जाती हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत जरूरी माना जाता है।
1: जी बिल्कुल खुशी,
0: श्रोता साथ जैसे कि कुछ ऐसी जांचें होती हैं जो बुजुर्गों को करवानी चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर की जाँच, शुगर टेस्ट, दांतों की जाँच, हड्डियों की जाँच और हृदय जाँच।
1: जी हाँ,
0: तो यदि कोई दवा चल रही है तो उसे समय पर देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है
1: जी,
0: जिसके कारण उन्हें जो संक्रमण होता है या फिर जो बीमारियां होती हैं वो जल्दी अपनी चपेट में नहीं लेती है, इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि नियमित व्यायाम और योग भी करना।

0: मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल श्रोता साधन योग और प्राणायाम मानसिक शांति भी देते हैं, इससे हमारा तनाव कम होता है और हमें नींद भी अच्छी आती है। बिल्कुल श्रोता साधन हमें मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कई बार कोशिश हम देखते हैं कि बुजुर्ग शारीरिक रूप से तो नहीं बल्कि मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहते हैं।
1: बिल्कुल
0: उन्हें लगता है कि अब परिवार में उनकी ज़रूरत कम हो गई है, यह भावना उन्हें अंदर से तोड़ने लगती है। तो श्रोता साधन इसीलिए हमें उनसे बातचीत करनी है, उनकी राय हमें देनी है, उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं करने देना है।
1: बिल्कुल
0: पुरानी यादों को उनकी सुनी, बच्चों के साथ समय बिताने का प्रयास करें साथियों, इससे प्रेम और सम्मान भी बढ़ेगा। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं होता, आत्मसम्मान का भी होता है। साथ ही यदि घर के बुजुर्गों को सम्मान मिलने कोशिश तो वे मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहेंगे। आज कोशिश हम देखते हैं कि कई घरों में बुजुर्ग अपेक्षाओं का शिकार हो जाते हैं, यह स्थिति बहुत दुखद है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया है उन्हें बुढ़ापे में सहारा देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के अंत में हमारे दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों बुजुर्ग जीवन का वह पड़ाव है जहाँ व्यक्ति को सबसे अधिक अपनापन, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता होती है।
0: जी बिल्कुल
1: दोस्तों, उनकी सेवा केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमें यह समझना होगा मनीषा कि बुजुर्गों की देखभाल केवल उनके जीवन को लंबा नहीं करती
0: जी,
1: बल्कि उन्हें खुशहाल और सम्मान पूर्ण भी बनाती है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को संकल्प लेना चाहिए कि साथियों हम अपने घर के बुजुर्गों को समय भी देंगे, उनका सम्मान भी करेंगे और उनकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथ ही उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है साथियों वहाँ जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।
0: जी हाँ कोशिश आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत

संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vankhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को और आपके अपने दोस्त कशिश पाशर को।

0: गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूँ, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात बोली।
2: गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वाघा देवी द्वारा जन्म प्रसाद।

आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मेरी आपसे बातचीत होगी। दोस्तों आज हम एक ऐसे गुण को लेकर बात करने जा रहे हैं जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जीवन की हर सफलता की नींव होता है और वो है धैर्य। साथियों आज की दुनिया तेज है आप सभी जानते हैं, हर कोई जल्दी नहीं है, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए, जल्दी सब कुछ चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन साथियों जीवन की सच्चाई तो ये है कि जो चीजें जल्दी मिलती है वो अक्सर टिकती नहीं है। धीरे धीरे चलने वाला ही श्रोता साथियों दूर तक जाता है और यही सच्ची बात है। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। तो कार्यक्रम में मजा आएगा साथियों क्योंकि गीत संगीत भी कार्यक्रम में रहेंगे और गीत संगीत से मुझे याद आया कि शुरुआत में भी पहले मैं आपको मनोरंजन करवाती हूँ एक गीत के साथ में। तो साथियों आज भी सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप भी बने रहिएगा आपका अपना रेडियो आपकी अपनी आवाज वावर रेडियो 90.8 FM पर।

रिश्वत देना तो खुद पाप ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो फ्री और ना छड़े। लिख लिख कर पढ़ा अकेले बनाया अभी का रामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन चला गया।

साथियों, गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गुण की जो दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन में महत्व बहुत रखता है और वो गुण है धैर्य का गुण। साथियों, देखते हैं कि धैर्य का मतलब है मुश्किल समय में टूटना नहीं, परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। लेकिन साथियों, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो मुश्किल समय को भी आसान बना देती है। हम देखते हैं साथियों कि जब हम अपने जीवन में धैर्य रखते हैं तो हम हर परिस्थिति को समझदारी से देख पाते हैं। हम जल्दबाजी में कभी गलत फैसले नहीं लेते श्रोता साथियों, बल्कि सोच समझ कर आगे बढ़ते जाते हैं। और वो कैसे? क्योंकि हम धैर्य के गुण को अपनाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि आज के समय में धैर्य के गुण की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि साथियों आप खुद ही मुझे ये बताइए कि आपने कहीं धैर्य रखने वाला व्यक्ति देखा है? और अगर देखा भी है और गलती से हमें कहीं मिल भी गया तो लोग उसे पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हैं और उससे उसका धैर्य भी खत्म हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले, हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश सफल हो, हम चाहते हैं साथियों कि कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में न आए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जो इंतजार करना नहीं जानते वे सफलता की गहराई को भी कभी नहीं समझ पाते। कई बार श्रोता साथियों, हम सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि परिणाम देर से मिलने वाला है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि परिणाम देर से नहीं मिलता, वह श्रोता साथियों सही समय पर मिलता है और उस सही समय का हम इंतजार नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है श्रोता साथियों हमारे लिए, क्योंकि धैर्य जैसा गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए जो कि वर्तमान में हमें कहीं नहीं देखने को मिलता। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि धैर्य और सफलता का बहुत ही गहरा संबंध होता है। वो कैसे? तो साथियों, हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य छिपा होता है, ऐसा हमने सुना भी है और देखा भी है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता श्रोता साथियों, उसके पीछे उसके कई वर्षों की मेहनत, ढेर सारे संघर्ष और कई दिनों का धैर्य होता है साथियों। और आपने सुना भी होगा कि बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर साथियों किसान बीज बोने के अगले दिन ही फल की उम्मीद करे तो क्या कभी वह सफल हो सकता है? नहीं हो सकता ना श्रोता साथियों, क्योंकि बीज बोने के बाद भी तो पौधा बनता है और पौधे के बाद पेड़ बनता है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में सफलता चाहिए श्रोता साथियों, तो आपको धैर्य को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि बातें मेरी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत अच्छी चल रही है और हम जान पा रहे हैं कि आज के समय में धैर्य जैसे गुण की हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन श्रोता साथियों हम प्रयास करेंगे, हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाएंगे तो कह सकते हैं कि धैर्य का गुण हमें सब में देखने को मिलेगा और हम अपने जीवन में सफल भी हो पाएंगे। तो श्रोता साथियों, बातें आगे कार्यक्रम में और होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपने दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और बढ़ते हैं साथियों फिर से हमारे विषय की ओर। जैसा कि हम धैर्य के गुण को लेकर बातचीत कर रहे थे और गीत से पहले हमने जाना था कि आज के समय में धैर्यपूर्ण व्यक्ति हमें

सफलता पाने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी और धैर्य के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो साथियों, अब जानते हैं कि धैर्य हमें क्या सिखाता है। साथियों, धैर्य हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जैसे कि हमें शांत रहना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और मजबूत बनना। हमें सही निर्णय लेने में भी धैर्य मदद करता है साथियों, और हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी देता है। क्योंकि श्रोता साथियों, किसी ने सही कहा है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे मजबूत होता है। जब हम धैर्य रखते हैं श्रोता साथियों, तो हम हर समस्या को एक नए नजरिए से देखते हैं। हम घबराते नहीं हैं, बल्कि समाधान ढूंढने के प्रयास करते हैं। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से ये जान पाए हैं कि धैर्य हमें क्या क्या सिखाता है। अब यही अगर बात करें धैर्य की परीक्षा की, तो साथियों, जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमारा धैर्य परीक्षा में होता है। वो कैसे? तो जब मेहनत का फल हमें नहीं मिलता, तो हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती है, तब भी हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। और जब लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं श्रोता साथियों, तब भी धैर्य की गुण की परीक्षा होती है। ऐसे समय में दोस्तों, मन करता है हार मान लेने का और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन साथियों, वही सही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। और धैर्य अगर हमारे पास है, तो हमें किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं साथियों। क्योंकि दोस्तों, अगर धैर्य है तो कठिन समय भी आएगा, और जो कठिन समय है वो हमें धैर्य के साथ मजबूत बनाता है। अगर हम श्रोता साथियों उस समय टिक जाते हैं, तो हम खुद को और मजबूत बना लेते हैं, और यही हमारे धैर्य की पहचान है श्रोता साथियों। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि धैर्य की परीक्षा में सफल होना बहुत जरूरी है, और जो इस परीक्षा में सफल हो गया श्रोता साथियों, तो वो तो आप समझ लीजिए कि जीवन रूपी समंदर में नैया पार हो गई। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि आपको अपने जीवन में धैर्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसा गुण है श्रोता साथियों, जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अब श्रोता साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि आप धैर्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन धैर्य को हम अपने जीवन में विकसित कैसे करें? बिल्कुल, वो भी मैं अगर आपको बताऊं साथियों, तो धैर्य एक दिन में कभी नहीं आता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। इसे श्रोता साथियों धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। वो कैसे? तो खुद पर भरोसा रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें साथियों। जल्दबाजी करने से आपको बिल्कुल बचना है, और हर स्थिति को समझने की कोशिश करनी है, और फिर ही प्रतिक्रिया देनी है। क्योंकि साथियों, धैर्य जैसे गुण अभ्यास से आते हैं, और अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। इसलिए श्रोता साथियों, जब हम खुद को समय देते हैं, तो हम खुद के लिए बेहतर बन रहे होते हैं, और जब हम बेहतर बन जाते हैं, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए साथियों, याद रखें कि धैर्य वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जो धैर्य रखता है, वही अंत में जीतता है साथियों। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए श्रोता साथियों, कि हर बड़ी सफलता के पीछे लंबा इंतजार होता है। इसलिए धैर्य रखिए, सही समय जरूर आएगा। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने ये जाना कि धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें मजबूत बनाता है, हमें सही दिशा देता है, और हमें सफलता तक भी पहुंचाता है। तो श्रोता साथियों, आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब धैर्य और मेहनत साथ होते हैं, तो सफलता निश्चित होती है श्रोता साथियों। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए साथियों, धैर्य जैसे गुण को मत खोइए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, और बातें भी मेरी आपसे पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, वावड़ रेडियो 90.8 FM।

तो साथियों, जैसा कि आप सुन रहे थे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, और आज का हमारा विषय भी बहुत ही प्यारा सा था, धैर्य के गुण को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की

आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार साथियों।

0: इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रखिए, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वाघा देवी द्वारा जन्म प्रसाद।

जाते ही वो आपके बारे सोचो अगर आप उन्हें रोके जाएगा तो हूँ था नाना अंजलि बोन हूँ था का अभी जाते ही वो आपने जो नदिया है ये रोके जाएगा खेतर मंजर थे जाएगा ने आप जीवन जो है ये रोके जाएगा ओ अंजलि बोन एटले मन का कहे हैं कि पानी तो कान है पानी किस आप जीवन है होवे जाते ही वो हर बूंद में आप जीवन है ने आज धरती माता नो संबल होवे अंजलि बोन आपरे भाई बोन के आपे अनुरोध करा कि नाना खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी ने संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलन है तो आपू ने आप आभा वाली पीढ़ी ने जीवन सफल थी सका होवे होवे जाता थी बोन आपरे भाई बोन ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपू धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आपकी पहचान है हर बूंद मोर आपड़े सामने वाघ रेडियो वाघ संग्रह।

सुबह सुबह एक खाब की दस्तक पर दरवाजा खुला देखा, सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुन समाये, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का खोल लाए थे। आग खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे तिल का सहरा तक चिपक रहा था। खाब था शहर, खाब की लीला। सरहद पर कल रात सुनाने चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुनाने कुछ खाब का।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत कैसे रहे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।

हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों फिर मुलाकात होगी अगली सभा में, तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश मारेशर को।